संसार हरे जगत जगतार भजन करो।

नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पर आ गई है आप सबकी दोस्त वर्षा लेकर आपके लिए एक नया कार्यक्रम जिसका नाम है गली गली सिम सिम, जो है आपके लिए खास। जैसे आसमान का सितारा धरती पे उतारा, फिर उसने आकर खोला अपना जादू का पिटारा, जिसमें है ढेर सारी जानकारी और मस्ती। तो सुनते हैं लेकर चटकारा गली गली सिम।

0: यार बड़ी भूख लगी है, जरा देखो तो आज क्या है किचन में। ये क्या, फिर से वही गोभी और वही आलू। भाई आलू गोभी खा खा के मेरे दांत भी थक गए हैं, कुछ नया भी तो होना चाहिए। रोज रोज कुछ नया नहीं खाऊंगा तो मुँह का स्वाद कैसे बदलेगा। अरे हाँ, खाने से याद आया, आज ना गली में एक नाटक होने जा रहा है जिसमें अपना गुगली बना है राजा और चमकी बनी है मंत्री। ओ जी, नाटक शुरू होने जा रहा है, जल्दी जल्दी सब अपनी जगह पर बैठ जाओ। आज महाराज गुगली के दरबार में एक नए मंत्री आए हैं।
1: महाराज गुगली की जय।
2: हमें भूख लगी है, हमारे नए मंत्री के स्वागत में पूरे दरबार को खास शाही पकवान परोसा जाए।
1: पेश है शाही पकवान।
2: मेरा मन पसंद शाही पकवान।
3: फिर वही शाही पकवान, रोज रोज शाही पकवान, बोर हुए हम खाते खाते रोज यही शाही पकवान।
4: कुछ करिए मंत्री चमकी।
5: क्या हर रोज यही पकवान बनता है? लगता है शाही रसोइये से बात करनी पड़ेगी। नमस्ते शाही रसोइये।
6: अरे मंत्री चमकी, आप
5: बताओ रसोइये, कल दरबार के लिए खाने में क्या बनाओगे?
6: शाही पकवान, और क्या, रोज वही बनाओ वही खाओ। मैं तो शाही पकवान से बोर हो गया हूँ, मुझे सपने आते हैं नई नई सब्जियों के, भिंडी के, गाजर के, रसीले लाल टमाटर के।
5: लेकिन तुम हर दिन कुछ नया क्यों नहीं बनाते?
6: मंत्री चमकी जी, हमारे महाराज गुगली रोज शाही पकवान ही खाते हैं और साथ में हमें भी खिलाते हैं।
5: अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।
0: वैसे बात तो सही है, अगर कोई नया नया खाना ट्राई नहीं करेगा तो उसकी सेहत कैसे बनेगी। मुझे ही देख लो, लंबा चौड़ा तगड़ा हूँ, बिल्कुल सलमान की तरह। और फिर अगले दिन दरबार में
1: महाराज गुगली की जय।
2: हमें भूख लगी है, शाही पकवान लाओ।
6: ये लीजिए महाराज।
2: अरे वाह, आज तो हमारे शाही पकवान से कुछ ज्यादा ही अच्छी खुशबू आ रही है। लाओ मेरे पास लाओ शाही रसोइये।
6: जी महाराज।
2: ये मेरा शाही पकवान नहीं है, तुमने नया पकवान बनाया।
6: जी महाराज।
2: तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
5: गुस्सा मत कीजिए महाराज, आप टेस्ट तो करके देखिए।
1: महाराज ने चम्मच को उठाया,
7: पूरे दरबार में सन्नाटा छाया।
2: भाई वाह,
4: महाराज को नया पकवान पसंद आया।
2: मैं करता हूँ ये ऐलान, अब राज्य में रोज बनेंगे तरह तरह के पकवान।
1: महाराज गुगली की जय हो, मंत्री चमकी की जय हो।
0: ओए बल्ले बल्ले, गुगली महाराज खुश और राज्य के सब लोग भी खुश। रोज नया खाओ, पौष्टिक खाओ और अपनी सेहत बनाओ। सब लोग इतने खुश थे कि उन्होंने तो गाना ही सुना दिया। लो जी।

0: मजा आ गया। अब सब बच्चों की मम्मी और डैडी को मैं एक राज की बात बताता हूँ। अगर कभी आपके चुन्नू मुन्नू बोलू मोलू नई नई चीजें खाने से मना कर दे तो मैं आपको एक तरकीब बताऊं। कोई बात नहीं, थैंक यू, बाद में बोल लेना। तो सुनिए, आप सब अपने बच्चों के साथ मिलकर खाना बनाएं और फिर देखिए कि उन्हें अलग अलग चीजें खिलाना आसान हो जाएगा। जैसे कि मेरी दोस्त पल्लवी और उसकी मम्मी मिलकर कुछ बना रहे हैं।
1: सब्जियों और फलों में मुझे सबसे ज्यादा पसंद है आम। आम फलों का राजा है। मेरा नाम पल्लवी। सबसे अच्छे आम गर्मियों में ही मिलते हैं। आम किसी भी तरह खाया जा सकता है और आज मैं, मम्मी और शिरीन मिलकर स्वादिष्ट भेलपूरी बनाएंगे। ये बनेगी खट्टी मीठी अम्बी से, मतलब कच्चा आम। गर्मी में ये चटपटी भेलपूरी कितनी ताजगी भरी होती है। अब हम भेलपूरी में कुछ सब्जियां और मसाले डालेंगे। तीखा प्याज, लाल लाल टमाटर, मिर्च, बड़ा मजा आ रहा है। भेलपूरी में हम मुरमुरे जरूर डालते हैं और फिर मिला देते हैं सभी सामान। बन गई चटपटी भेलपूरी। अब आएगा मजा, हम सब साथ मिलकर खाएंगे चटपटी भेलपूरी।
0: देखा कितने बढ़िया तरीके से पल्लवी और उसकी मम्मी ने साथ में भेलपूरी बनाई। वाह, अब मैं तैयार हूँ चमकी और गुगली के साथ एक गेम खेलने के लिए। चलो चलकर देखते हैं ये दोनों क्या खेल रहे हैं।
2: गुगली, मैं तुमसे एक पहेली पूछूंगी और एक आवाज भी सुनाऊंगी। तुम्हें आवाज सुनकर उस खाने की चीज का नाम बताना है। तो तैयार?
3: तैयार।
2: तो सुनो पहेली। उगती है जमीन के नीचे लंबी पतली सब्जी लाल, इसको अगर दांत से काटो तो आती है ये आवाज। बताओ गोगी, मैं कौन सी सब्जी के बारे में बात कर रही हूँ?
3: उगती है जमीन के नीचे लंबी पतली सब्जी लाल।
2: हाँ, एक बार फिर से आवाज सुन लो।
3: लाल सब्जी जिसको खाने से ऐसी करारी आवाज आती है। समझ गया, ये है गाजर।
2: बिल्कुल सही, गाजर, जिसको इंग्लिश में कैरेट भी कहते हैं। गुगी गुगी, ये तो बहुत मजेदार गेम है। चलो अब हम ये गेम अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं। क्यों, खेलोगे ना तुम मेरे साथ? हुँ?
3: तो हो जाओ तैयार। चलो चमकी, पहला सवाल तुम पूछो।
2: ठीक है, सुनो दोस्तों। रंग में मैं सफेद हूँ, पीने की चीज हूँ, रोज पिया मुझे तो बनोगे तंदुरुस्त और बलवान। आवाज सुनो और बताओ क्या है मेरा नाम?
3: रुको रुको, सोचने दो। रंग में मैं सफेद हूँ, पीने की चीज हूँ, रोज पिया मुझे तो बनोगे तंदुरुस्त और बलवान। आ गया समझ। चमकी, मैं बताऊं?
2: अरे गुगी, अभी रुको, बाकी सबको सोचने का मौका दे दो। क्यों दोस्तों, क्या तुम्हें पता चला? एक बार फिर से सुनोगे आवाज?
3: चमकी, अब तो जवाब बताने दो।
2: अच्छा अच्छा, बताओ क्या है जवाब?
3: दूध, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं मिल्क।
2: एकदम सही, क्या तुमने भी दूध कहा? बहुत बढ़िया,
0: मजा आया ना। अब यार ये बताओ, इसको छिलो तो कोई

0: को खाओ तो भी कोई आवाज नहीं आती, पर इसके छिलके पे जब कोई फिसलता है तो बड़ी जोर की आवाज आती है। जी क्या बोला, केला यानी बनाना। ओए सही जवाब। ओ यार आज खाने के बारे में कितना कुछ सीखा हम सब ने। हर तरह का खाना खाओ और सेहत बनाओ। अब वक्त है मिलने का हमारी प्यारी नटखट चुलबुली चमकी से। सुनते हैं कि आज चमकी कौन सी मजेदार बातें कर रही है अपने दोस्तों से।
1: कल हमारी गली में पिकनिक थी, सब लोग अपने घर से अलग अलग चीजें बना के लाए थे। पता है बुम्बा ने बोला ये सब पौष्टिक खाना है, मगर सब इतनी ढेर सारी सब्जियाँ क्यों खाते हैं? मैं बात में पूछती हूँ। हाय मेरा नाम है चमकी और आप?
2: अब्दुल रहमान।
1: अब्दुल रहमान जी पौष्टिक खाना क्या होता है?
2: जैसा कि नाम से ही मालूम है कि पौष्टिक खाना बच्चों को देने से उनकी हड्डियों में मजबूती पैदा होती है, उनका दिमाग बहुत अच्छी तरह काम करता है, उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाता है, उनका पढ़ाई में रुचि होती है, खेलने में भी रुचि होती है। पौष्टिक खाना जीवन में तरक्की करने के लिए निहायत जरूरी है।
1: और आपके गांव में कौन कौन सी पौष्टिक सब्जियां उगती हैं?
2: पालक है, टिंडा है और बहुत सारी सब्जियां जैसे लौकी है।
1: मुझे भी पौष्टिक खाना खाना चाहिए ताकि मैं और स्ट्रांग बन जाऊं। मगर मुझे ना कुछ कुछ हरी सब्जियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्या करूं? हाँ गुड़गांव में अपनी दोस्त से पूछती हूँ।
3: मेरा नाम शांति है।
1: शांति, सुमित और उसके भाई बहनों को कौन सी सब्जी अच्छी नहीं लगती?
3: वो तो बस आलू की ही सब्जी पसंद करती है और कुछ भी नहीं खाना चाहती है।
1: हाँ सिर्फ आलू? हाँ फिर शांति तुम उन्हें कैसे खिलाती हो?
3: उन्हें कहती हूँ कि बेटे खा लो, थोड़ा भी खाना चाहिए, ताकत की चीज है हरी सब्जी खाने से, मगर खाती नहीं है उन लोग।
1: अरे मेरे गुड़गांव के दोस्त तो कोई भी सब्जी नहीं खाते। बुंदेलखंड में पूछती हूँ। हाय आपका नाम क्या है?
4: हमारा नाम है लक्ष्मीबाई।
1: आप अपने घर पे कौन कौन से पौष्टिक खाना बनाते हो?
4: दाल बनती, चावल बनते, पालक की भाजी बनती, मूली का साग बनता, सरसों का साग बनता, मेथी का बनता, चनों का भी बनता, सब बना के ये बच्चों को देते हैं।
1: अरे वाह बुंदेलखंड में मेरे दोस्त तो सारी पौष्टिक सब्जियाँ खाते हैं। एक और दोस्त से भी पूछती हूँ। हाय वैष्णवी, ऐसी कौन सी सब्जी है जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती?
5: पालक।
1: ओ फिर तुम पालक कैसे खाती हो?
5: जब मम्मी अपने हाथ से खिलाती है।
1: हाँ मुझे भी तो बहुत अच्छा लगता है। शारदा आप वैष्णवी को पालक और पौष्टिक सब्जियाँ कैसे खिलाती है?
6: मैं वैष्णवी को पालक कहानियाँ सुना के खिलाती हूँ।
1: ये अच्छा तरीका है, मैं भी कहानी सुनकर सारी सब्जियाँ खाऊंगी। मुझे तो भूख लग रही है। चलो सुने कि पौष्टिक सब्जियों को और स्वादिष्ट कैसे बना सकते हैं?
4: मैं करेला बनाती हूँ तो उसको छील के और अपने कढ़ाई में रख देती हूँ। तेल डालूं 2 चम्मच, फ्राई करी लाल हो गए इनको निकाल के रख देती हूँ। फिर 1 चम्मच दालचीनी, जीरा का को गरम मसाला और अजवाइन है, मेथी है, सब हम लोग पीस के उसको मसाला अच्छा बना के उसको फ्राई करके बच्चों को फिर खिलाते हैं।
1: अब मैं सब कुछ खाऊंगी, तुम भी सब सब्जियां खाना, ठीक है दोस्तों? ओके बाय
0: बाय। मजा आया ना दोस्तों।

0: दोस्तों मजा आया ना आज का हमारा जो एपिसोड था यानी के गुगली महाराजा। वही बात, क्या बात है, गुगली महाराजा की तो बात ही अलग है। और फिर हमारे कार्यक्रम में जो कितनी अच्छी अच्छी बातें करी गई हैं, भाई हरी सब्जी क्या होती है, हरी सब्जी मुझे तो उसका कलर ही बहुत अच्छा लगता है। आपको पता है कि हरी सब्जी का जो रंग होता है यानी कि ग्रीन, और ग्रीन रंग तो सभी को पसंद होता है जैसे, तो इस पर पेड़े भी कितने हरे हरे हैं तो वो हमें कितने सुंदर लगते हैं, और जब पेड़े सुंदर लगते हैं तो उसी तरह सब्जियां भी सुंदर लगती हैं, और जब सुंदर सुंदर चीजें हम खाएंगे तो हम सुंदर सुंदर बन जाएंगे। अब इस बात पर हमारे साथ में मौजूद है पजनपुरा की गीता जी, तो आइए वो क्या कहती है इस बारे में।
1: नमस्कार, मेरा नाम वर्षा है, आपका नाम क्या है?
2: नमस्कार, मेरा नाम गीता है
1: जी। तो गीता जी, जैसे कि अभी देख रहे हैं कि हरी सब्जियों के बारे में बहुत झगड़ा होता है कि बच्चे हरी सब्जियां नहीं खाते हैं, तो क्या कारण हो सकता है कि बच्चे हरी सब्जियां क्यों नहीं खाते हैं?
2: उनका कारण एक ही है कि वो हरी सब्जी पसंद नहीं करते, इसीलिए उनको अलग तरीके से हम खिला सकते हैं बच्चों, क्योंकि हरी सब्जी यहाँ तक कि बड़े भी नहीं खाते
1: जी। तो इनका मतलब हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि कोई ऐसा उपाय है जिस तरीके से हम उनको हरी सब्जियां खिला सकते हैं?
2: हाँ, ऐसा दूसरा तरीका भी है, जैसे कि हमारी हरी सब्जी है जैसे लौकी है, तो उसका हम कोफ्ता बना दें तो बच्चे पसंद कर लेंगे खाने के लिए। और दूसरी तरह जैसे पालक है, तो पालक भी नहीं खाते तो उनको मतलब पालक पनीर जैसा पनीर मिला के बनाए तो वो पसंद कर लेंगे, कि आलू में बनाए तो पसंद कर लेंगे। ज्यादातर बच्चे आलू ही पसंद करते हैं, इसलिए आलू में हम मिक्स करके बना सकते हैं, या पालक पनीर ही बनती है ना, तो वो वैसा ही बना सकते हैं, तो बच्चे पसंद कर लेते हैं।
1: अच्छा, और क्या क्या वजह है जिनसे बच्चे नहीं खाते हैं, मतलब बच्चों को खाने में अक्सर क्या पसंद होता है?
2: बच्चों को खाने में अक्सर पसंद होता है कि उनको चटपटी सब्जी मिले, और हरी सब्जी तो वो बिल्कुल पसंद ही नहीं करते, जैसे कि आलू हुए, छोले हुए, और दाल, मतलब ये दाल चावल तो वो खाते ही है, और बल्कि हरी सब्जी बहुत ही कम खाते, इसलिए हमें अलग तरीके से उनको बना के हरी सब्जी, क्योंकि पौष्टिक होती है तो उनको आहार मिलना चाहिए, तो इसलिए हमें दूसरे तरीके से बनाकर उनको खिलाना चाहिए
1: जी। आपने बताया जैसे कि हरी सब्जी पौष्टिक होती है, तो किस तरह से हमारे शरीर को फायदा करती है इसके बारे में थोड़ा बताएं?
2: हमारे शरीर को जो हरी सब्जियों से विटामिन मिलती है तो फायदा ही तो होता है कि हरी सब्जियां ना खाएं, तो कि अगर हम बच्चों को खिलाएं ना तो मतलब पौष्टिक के आहार कम ही हो सकती है, जैसे कि बड़े हों या छोटे बच्चे हों, तो हमें ज्यादा जरूरी है कि उनको हरी सब्जी खिलाना चाहिए, क्योंकि उनको आहार मिले, पौष्टिक आहार मिले। और इसके अलावा कि तो मतलब हमें नुकसान भी बता सकते हैं, इसलिए हमें हरी सब्जियां देख के खानी चाहिए।
1: धन्यवाद
2: धन्यवाद।

श्रोताओं नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनई बारे हमारे सब साथियों को बहुत ही बहुत स्वागत हम करा देंगे। हम तो हैंगे भैया आपके संगे आपकी रेडियो दोस्त वर्षा, लेके हाजिर हैं आप सबके लाने कार्यक्रम हमारी संस्कृति हमारी विरासत। जी हाँ श्रोताओं, हमारी संस्कृति और हमारी विरासत ये दो ही चीजें अपने तय की बहुत ही ज्यादा मशहूर रहती हैंगी। और आप सब जने जानते हैं कि बुंदेलखंड की चर्चा हर जगह होतेगी, जब खूबसूरती की बात करी जाए या फिर विरासत की बात करी जाए या धरोहर की बात करी जाए। और ऐसे ही में अपन और का

0: कार्यक्रम से आज आपको ले चला देंगे चंदेरी। जी हाँ साथियों, आपने चंदेरी की साड़ियां तो बहुत सुनी हुई है, लेकिन चंदेरी को ऐतिहासिक का रहस्य है गो, उसके बारे में भी अपन और कार्यक्रम के माध्यम से जाना थेंगे। तो आप देर नहीं करे थेंगे, हम आपको ले चले थे सीधे चंदेरी, कह के पहुंचे में तना टाइम भी लगे होते, ठीक है। तो चलो अपन सैर कर भी चले थेंगे और संस्कृति के बारे में जाना थेंगे चंदेरी की, और जी के बारे में विशेष पूरी जानकारी दे रहे हैं अपने रेडियो साथी जगरूप जी।
1: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार,

ज्ञान जिनको पानी सुधा समान पर्वत जंगल आलीशान सुबह सुबह और मिलके धसान जिनको पानी सुधा समान पर्वत जंगल आलीशान तो जितनी गर्मी उतनी वर्षा।

आई, कौशल्या की पदवी पाई, गोदी से लत रहे रघुराई। प्रेम भाव के भूखे भगवान, प्रेम भाव के भूखे भगवान, वीरन तज पाठन अपनो प्यार हो बुंदेलखन। प्रेम भाव के भूखे भगवान, वीरन तज पाठन अपनो प्यार हो बुंदेलखन। भारत माता को हृदय दोहे, जीपे हमें

0: पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल। वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है। वृक्ष लगाइए, जीवन बचाओ।
1: वीर सिंह यादव के स्वर में अभी हमने ये लोक गीत सुना, अपनो प्यारो बुंदेलखंड, भारत माता को हृदय है। बिल्कुल मित्रों, ये गीत भी बिल्कुल बयां करता है हमारे इस बुंदेलखंड को। हमारा बुंदेलखंड, हमारा ये जो प्रदेश है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, तो हमारे भारत देश का एक मध्य स्थल है, हृदय क्षेत्र है। तो अब हम आगे बढ़ें और चलते हैं हृदय स्थली की एक ऐसी जगह पर जहाँ बहुत ही लोक लुभावन संस्कृति से परिपूर्ण और प्राकृतिक सौंदर्य निहारते ही बनता है। हम बात कर रहे हैं वही चंदेरी की, तो चलते हैं चंदेरी। श्रोताओं, आज हम आपको ले चलते हैं अपने बुंदेलखंड की, हालांकि ऐतिहासिक जो जानकारी आप सभी को हम अब तक पहुंचाते रहे हैं। आज प्रातः काल का वक्त है और चंदेरी जो कि ऐतिहासिक नगरी है, अपने आप में एक रमणीक जगह है जो कि देखने लायक ही है। और आज हम बस्ती से जब आए यहाँ, जागेश्वरी देवी माँ का प्रसिद्ध मंदिर है जो कि पहाड़ पर बना हुआ है, और यहाँ पहाड़ से हम देख रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ते हुए आ गए हैं ऊपर, जो यहाँ की नगरी को देख रहे हैं तो देखते ही बन रही है। और हम चलते हैं जागेश्वरी मंदिर, माता रानी के दरबार में। हमारे साथ हमारे साथी भी हैं, मोहन वर्मा जी, जो कि

0: हमारे साथ ओरछा से ही आए हैं अपनी गाड़ी से। अब हम अंदर प्रवेश करते हैं मंदिर में और अब हम मंदिर प्रांगण में आ गए हैं तो सामने ठीक खड़े हैं जहां पर शिव जी का स्थान बना हुआ है प्राचीन, और हनुमान जी महाराज की भी प्रतिमा है बगल में। देखते हैं कि यहां पर प्रभा देवी और काफी जो चरण सेवक हैं उन्होंने कुछ व्यवस्थाएं कर रखी हैं। काफी बड़ा जो आयताकार जगह में ये स्थापित मंदिर, जगह जगह पहाड़ों को तराश करके कुछ मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। और श्रोताओं, हम आपको बता दें कि माँ जागेश्वरी देवी के मंदिर में हैं हम, जो पुजारी हैं उनसे हम थोड़ी सी जानकारी करते हैं, माता रानी के चर्चा करते हैं माता रानी जी के विषय में। आप अपने बारे में बताएं, आपका शुभ नाम।
1: हमारा नाम मनोज कुमार चौबे है, उपनाम जुग्गे महाराज है। यहाँ हमारे पूर्वज सन 1631 से हैं और वहाँ पूर्वजों द्वारा जो ज्ञात है यहाँ पे उस समय झांसी स्टेट रहा है यहाँ का, झांसी स्टेट का फिर ग्वालियर हुआ। यहाँ ये विंध्य मेखलाओं के बीच माँ जागेश्वरी माँ विराजी हुई हैं, जो हिंदुस्तान के 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। यह शक्तिपीठ हिंदुस्तान के जो 52 शक्तिपीठ हैं, माँ सती के अंग हैं। 52 अंग जो भगवान शिव की भार्या के इस मृत्यु लोक में अवतरित हुए हैं उनमें से यहाँ माँ का मुख है। उसके साथ एक किंवदंती जुड़ी हुई है। उस किंवदंती में बताया जाता है कि राजा कुरुम देव हुए हैं, कुरुम शासक, और उनके समय में यहाँ प्राकट रूप है। उसकी खोज बंसीधर चौबे नाम के पंडा जी हुआ करते थे जिन्होंने की, फिर उनको ये तीर्थ दान स्वरूप दे दिया गया था। इसके बाद यहाँ पर जो शिवलिंग है 2251 शिवलिंगों के साथ शिव शक्ति का संगम केंद्र है। वाणी से प्रमाणित नहीं होगा, यहाँ एक प्रतिमा है भगवान शिव की और पार्वती की, जो बाहें हाथ में डाले हुए हैं एक दूसरे के, तो ये शिव शक्ति का संगम केंद्र वह प्रतिमा प्रमाणित करती है। यहाँ 7 झरने हैं, 7 झरनों का स्वाद भिन्न है। इस तीर्थ में आए हुए श्रद्धालुओं के लिए संतान प्राप्ति का अद्वितीय केंद्र है। माँ कन्या के रूप में दर्शन दिए हैं राजा को, और राजा को स्वप्न में प्रकाशित किया था कि माँ जागेश्वरी मैं प्रकट होना चाहती हूँ, कुछ मंदिर का निर्माण करवा। मंदिर का निर्माण करवा की पूर्वाभिमुख और उसके पट 9 दिन तक नहीं खोलना है। राजा अविश्वासी हुआ करते हैं, उनके चाटुकार इतने हुआ करते हैं कि विश्वास करना सहज नहीं होता, क्योंकि कौन सत्य बोल रहा है कौन असत्य बोल रहा है। तो राजा ने मंदिर का निर्माण तो करवाया लेकिन पट 9 दिन की बजाय 3 दिन में खोल दिए, तो माँ का मुख निकला हुआ है।
0: अच्छा,
1: माँ के मुख के ही दर्शन होते हैं और ये संतान प्राप्ति का अद्वितीय केंद्र है। यहाँ के झरनों के जल का पीछे जो कुंड बना हुआ है बताते हैं कि ये रोगों को दूर करता है। यहाँ आने पर स्वयं प्रमाणित होता है कि ये भौगोलिक परिस्थिति से तपस्थली रही है।
0: बिल्कुल,
1: और ये तपस्थली स्वतः प्रमाणित करती है, जब जीवधारी यहाँ कोई भी आता है तो उसे यहाँ आने पर अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। और इस तीर्थ में शिव शक्ति के संगम केंद्र पर यहाँ भगवान शिव की विशेष आराधना की जाती है। श्रावण मास में 2251 शिवलिंगों का एक साथ अभिषेक किया जाता है और माँ का भी अभिषेक होता है। नवरात्रि में यहाँ पर काफी रस रहता है। कुमार की नवरात्र में यहाँ मेला नहीं भरता लेकिन चैत्र की नवरात्रि में यहाँ मेला भरता है और दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, चुनरी लाते हैं। जैसे लोगों की कावड़ यात्रा होती है, यहाँ पर चुनरी यात्रा होती है। जगह जगह से लोग चुनरी लाते हैं, अपनी आस्था को यहाँ माँ के पास प्रकट करते हैं। माँ के प्राकृतिक नेत्र हैं, जीवधारी जब सामने खड़ा होता है तो माँ स्वयं देखती हैं। यहाँ सामने खड़ा है सन्मुख हो ही जीव मोहि जबही और जन्म कोटि अघनासे हूँ तबही। 11 वर्ष से यहाँ रामायण चला रहा हूँ जो निरंतर गति में है, और ये तपस्थली, भजन स्थली, तंत्र स्थली, सिद्ध स्थली और शक्तिपीठ है। इतने प्रकरणों के समाहित है ये। यहाँ पर दत्तात्रेय की प्रतिमा है, जहाँ अनुसुईया जी ने कमंडल से जल छिड़क करके उनकी सतीत्व को नष्ट कर

0: भेजा गया था ब्रह्मा विष्णु महेश को, तब उनको बाल स्वरूप बना दिया गया था। बाल स्वरूप प्रतिमा भी यहाँ है और यहाँ पर 2251 शिवलिंगों के साथ दत्तक गणेश भी है, दक्षिणावर्ती गणेश। यहाँ जितने गणपति हैं वो सब दक्षिणावर्ती हैं, सब दक्षिणावर्ती हैं। और यहाँ भक्तों श्रद्धालुओं के लिए अद्वितीय शांति प्राप्त की जाती है। यहाँ पर भिखारी नहीं है, कोई भी भिखारी यहाँ नहीं मिलेगा। और यहाँ पर शुरू से ये नियम है कि अंदर जो पुजारी भी अटते हैं, जो अन्य तीर्थों में कल्चर है कि भक्त आया नहीं कि पुजारी से अटे, यहाँ पर इस तरीके का कोई स्वरूप नहीं है। यहाँ आने के बाद भक्त स्वतंत्र है, वो अपनी आराधना अपने हिसाब से कर सकता है, उसको कोई ना भिखारी छेड़ेगा ना पुजारी छेड़ेगा। यह विशेष पवित्रता इस तीर्थ की हमेशा से है और रहेगी।
1: आप और जो भक्त आते हैं, पर्यटक आते हैं, तो उनसे आप क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं उनको यहाँ के स्थल के बारे में, कि जैसे देखते हैं कि कभी क्षतिग्रस्त भी कर देते हैं या साफ सफाई को लेके उदासीन रहते हैं कई लोग, तो उनको किस तरह से आप कुछ कहना चाहेंगे?
0: यहाँ आने वाले भक्तों श्रद्धालुओं को समझाते हैं और साफ सफाई यहाँ हम स्वयं करते हैं, पोताई स्वयं करते हैं, रखरखाव स्वयं रखते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई सहयोग प्रशासनिक या नेताओं से नहीं है। और यहाँ पे 11 वर्ष से रामायण चल रही थी, उस रामायण को यहाँ के नेताओं और कर्मचारियों ने मिलकर के छेड़ा था, पंडा परिवार को भी सताया गया। और यहाँ पर विकास तो नहीं किया गया, अभी तो सताया जरूर गया है। व्यवस्थाओं को कभी बनाने की किसी नेता ने या कर्मचारियों ने कभी कोई कोशिश नहीं की है।
1: आप हमसे जुड़े और
0: पर्यटक आते हैं, पर्यटकों के लिए कोई शिकायत नहीं रहती, पर्यटकों का भव्य स्वागत किया जाता है। बाहर से विदेशी जो पधारते हैं उनको विशेष तरीके से स्वागत किया जाता है और उनको आदर सम्मान दिया जाता है। जो भी बाहर से पर्यटक आते हैं वे यहाँ प्रफुल्लता से बाहर जाने के बाद यहाँ की तारीफ करते हैं।
1: जो हमारे देश की, हमारे भारत माता की शान और एक आदर्श है कि अतिथि देवो भव, तो उसका आप साकार करते हैं।
0: यहाँ अतिथि देवो भव को साकार करना हमारा कर्तव्य और दायित्व बनता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप जुड़े और अपनी बातचीत की हमारे साथियों के लिए, आपको पुनः नमस्कार, धन्यवाद। और मित्रों यहाँ पे काफी दर्शनार्थी भी हैं, तो हम उनसे बात करते हैं। आप अपने बारे में, आपको शुभ नाम क्या है दादाजी?
2: हमारा नाम रामेश्वर प्रसाद याग्निक, रिटायर शिक्षक। हमने 40 साल मास्टरी करी, 20 साल मिडिल स्कूल, 20 साल हायर सेकेंडरी स्कूल, 1 साल जावरा रहे हैं।
1: तो आप उन्हें यही किए हो?
2: यही किए।
1: अच्छा, तब तो आपन कैसो महसूस करे थे यहाँ जन्म ले के ऐसी अच्छी तपोस्थली में, क्या कहे चाह रहे यहाँ के बारे में?
2: हम जो है देवी जी की बहुत अनुकंपा है हम पे। हम बचपन से आ रहे हैं, 5 वर्ष की आयु से आ रहे हैं, देवी जी की उनकी कृपा से हमारे सब भंडार भरपूर है। और हम जो है उन्हीं के आशीर्वाद से फल फूल रहे हैं। हमें किसी का ना देना है ना लेना है, बस माँ का दर्शन हो जाते हैं, दिन भर चैन से घटता है।
1: आप शिक्षक हैं और हमारे जो युवा साथी हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं?
2: बस सब खूब धर्म के प्रति आस्था बनाए रखें, धर्म में आस्था बनाए रखें। और हमारे पंडा जी ने अखंड रामायण चल रही है, राम भद्राचार्य जी महाराज ने चालू करी है। यहाँ पंडा जी बहुत मेहनत करते हैं, सबको खाना खिला रहे हैं, सबको चाय पानी ना सबको।
1: रामचंद्र जी का मंदिर है।
2: हाँ, वो अच्छा। खंगारों का है। हाँ। और वो जो है किराए पे ऊपर 2 मंजिल है, नीचे बहुत बढ़िया मंदिर है, हनुमान जी की मूर्ति है, बहुत सुंदर मूर्तियाँ उसमें रामचंद्र बोल रहे हम देखे, और बहुत बड़ा है मंदिर।
1: अच्छा।
2: हाँ, उसकी व्यवस्था जो है पता नहीं कौन कर रहा है, लेकिन ये एक बहुत अच्छी जगह है।
1: अच्छा है।
2: हाँ, बहुत बढ़िया है।
1: तो साथियों अभी हमने चंदेरी में जागेश्वरी मंदिर की ये विशेषता और वहाँ की बातचीत सुनी जुग्गे महाराज से, और अब वक्त हो चला है एक और गीत का। सुनते हैं एक और लोक गीत धनकुआ की आवाज में।

साथियों, अभी हमने धन कुंवर के स्वर में ये बुंदेलखंड पर आधारित लोकगीत भी सुन लिया और अब वक्त हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से आप सभी से विदा लेने का। और मित्रों, विदा तो लेना ही है, आपकी अब वारी है, नंबर है आपका कि आप हमें फोन लगाकर बताएं कि ये जो कार्यक्रम है, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, आप सभी को कैसा लगता है कार्यक्रम। मित्रों, अगर आपकी चिट्ठी या फोन आ जाते हैं तो हमें बहुत ही खुशी मिलती है कि चलिए हम जो कार्यक्रम आप तक पहुंचा रहे हैं वो आपको बेहद पसंद भी आ रहा है। तो आप हमें अपनी प्रतिक्रिया, अपने सुझाव, फीडबैक जरूर देते रहें हमारे इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाने के लिए। और हाँ, हम आपको बता दें, अगर आपकी जानकारी में अपने इस क्षेत्र में, अपने बुंदेलखंड में ऐतिहासिक, आपके गाँव की कोई विशेषता है, आपके गाँव में कोई ऐतिहासिक मंदिर या ऐतिहासिक किला या मठ, जो भी इतिहास से जुड़ा हुआ है, आप जरूर हमें बताएं। 9425-1417-26 पर अपने सुझाव दे सकते हैं। नंबर पुनः सुने, 9425-1417-26। हम आपके फोन का या पत्र का इंतजार करेंगे। मित्रों, हम आपको बता दें कि आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमारे इसी नंबर पर और लिख सकते हैं अपने गांव का नाम, अपना नाम और कार्यक्रम के बारे में कि आपको कैसा लगा। तो बस

अपने रेडियो साथी जगरूप को दें जाने की इजाजत। अगले कार्यक्रम में फिर होगी ऐसे ही मुलाकात। तब तक के लिए स्वीकार करें नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप इस वक्त अपने दोस्त माता दीन के संग में। और दोस्तों हम लेके आ गए कार्यक्रम बुंदेली किस्सा। तो आओ दोस्तों सुनते हैं कहानी को, लेते हैं कहानी को आनंद। तो साथियों आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने दोस्त माता दीन के संग में।
1: कुवत राजन के कुंवर और एक हते बानिया के लड़का।
2: अच्छा, मतलब एक हते राजा के कुंवर,
1: एक हते बानिया के।
2: आज दो जने हो गए।
1: हाँ। अच्छी तरह से रहे उनकी दोस्ती।
2: हाँ।
1: उनकी दोस्ती रहे सो अपने काम काहतों के पढ़ लिख के जो भी आ गए सुबन खुन चले जावे।
2: दो के दो
1: शिकार भी अपनों घोरो मस्के भी अपनों घोरो मस्के।
2: हाँ।
1: अब जब वन में पहुंच गए।
2: हाँ।
1: तो जा शिकार खेली बा शिकार खेली खेल खाल के अपने घर पहुंच गए। अब कल को दिन बरती तुम्हें फिर करना।
2: अच्छा,
1: कल के दिन में भी बोले कल ले बीरन बोले अब।
2: हाँ।
1: बीरन ने कही कि हम तो भाई ससुराल जा रहे।
2: अच्छा,
1: अब राजन को नहीं है तो पतो के हमारे ससुराल देते थे।
2: हाँ।
1: अब राजन को तो बस बीरन थे अपने बानिया के तुम्हारे शिकत बीरन।
2: अच्छा,
1: हो अब भी है बादशाह बीरन और बादशाह दोनों जने रहो। कह के राजा हो बीरन ने जिस बार मार बनवाए दाढ़ी फाड़ी बनवाई बार छटवाए कले कवैया कांके जाने छटे कले ससुराल हो जा रहे।
2: अच्छा,
1: अब जब नाव घेगो से नाव को रख तो गांव भर को के फलाने के ब्याह है फलाने के लगन है फलाने के सुतकरा है फलाने के पक्या थे
2: जा सही के
1: नाव को सब पतो है। नाव कुआ तो राजन की कुमारी की ससुराल को पतो
2: ऐसा।
1: अब बीरन के बार बन गए।
2: हाँ।
1: अब राजन के बादशाह के बनने।
2: हाँ।
1: बादशाह के बार बने।
2: हाँ।
1: बादशाह बोले बोले कर ले सीताजा का बोले कर ले ये राजन के राजा।
2: हाँ।
1: बोले कर ले बीरन तो जा रहा ससुराल है।
2: हाँ।
1: हमारे हम कैसे चले जावे।
2: हाँ।
1: अरे बोली कर ले राजन के राजा आप कैसे ससुराल तो पृथ्वी पे काऊ की है ही नहीं है।
2: अच्छा,
1: हाँ। हाँ। तो बोली कर ले अच्छी सब भी तीन जने हो गए।
2: अच्छा,
1: के नाव हो गए बादशाह हो गए बीजन हो गए अब तीन जने की दोस्ती हो गई। बस अब चले ससुराल के जाने। तो उनके राजन के कुंवर के पिताजी ने एक गेहूं ने कुज्जा खुदवाई थी सुबह में बीजक लगवाओ तो के जब बीरन की ससुराल को गल गई वो जब बादशाह की ससुराल को गल गई।
2: अच्छा,
1: गली में से बटी उन्हें लगी प्यास तो राजन ने हुक्म ढीलो चलो बीरन पिया पानी। तो बीरन गौ पानी पीवे के लाने सुबह ने बीजक बाँचो।
2: अच्छा,
1: बीजक बाँचो बाद में सुबह में गली अलग अलग।
2: हाँ।
1: बीरन हो बदमाश।
2: हाँ।
1: बीरन बदमाश हो।
2: अच्छा,
1: तो बीरन ने का करो किस्ता के पानी पी के बावरी में वो वह बीजक को भरा दो
2: ले उस तो
1: अगर हमारे अगर जब बीजक को जो राजा पानी पी भी आ रहा तो जब बाँचे ले तो संग छूट गो इसे के हमारे जी ससारे
2: चलेंगे
1: तीनों जने।
2: तीनों जने
1: जा तो बीरन बदमाशी के रहो राजा पानी पीवे गए।
2: हाँ।
1: तो राजा ने पानी पियो जो तमाम बावरी में है सुबह में बीजक में गिलाव लगो रहे। तो राजन ने अपने खोबन के उलीच उलीच के माए
2: धो जाओ
1: और फिर उगे बाँचो बाय सुबह ने उनमें प्रधान पूरो लिखो कि जा राजन के कुंवर को रास्ता गई वो जा बीरन के कुंवर को रास्ता गई दोनों जने। तो वो लिखा ले क्यों वे बीरन बोले कहिए राजन के राजा बोले तू बहुत बदमाश है बोले कल्ले पुरखन को बीजक के नहीं बता दिया है हट कर ले के हम अपनी ससुराल जाते अपनी ससुराल तो बोले कल्ले उनकी शर्तें लग गई।
2: अच्छा,
1: बोले कल्ले जो पहले आज विदा करा के वो जो बाउरी पे ठहरे क्या जन किसी को बीत जाए।
2: सही
1: सही सब भी अपनी ससुराल चले गए और भी अपनी ससुराल कल्ले वो जी सताई रखा नाव बोले कल जी राजन के संगे चले
2: सही है
1: अरे हमारे वर्ग के संगे का चले, हम सेठ आदमी और राजन के संगे जी वो हेल्पर चलते हैं। तो राजन की कुमार और सताई घर का दो जने जा रहे हो अपनी सतारे चले रहे। अब सब राजन के कुमार जा रहे सो बन कजली में पहुंचे। तो अब राजन की कुमार को लगी प्यास, बोले कर ले सताई घर का, बोले कर ले ये राजन के राजा कर ले हमें प्यास बहुत जोर से लग रही और हमारे सागर सही से प्राण निकले जा रहा है, इसे पानी को देखो। बोली कर राजन के राजा बारह कोस में ना है पानी ना माए पानी, अपन वन में हैंगे। बोली कर ले अरे क्या क्या बोल रहा है ना उसका। बोली कर ले हो महाराज सुबह एक का खैबर पे चढ़ी सुबह देखते भी लंबे जिस ऊंची जांगा हो सब देखा ऊंची जांगा हो भी चढ़ी तो ये उत्तर दिशा में बगली मर रहा है। तो नाव ने सोची कि बिन पानी की बगली रहती नहीं है, पानी इधर होगा
2: बिल्कुल।
1: तो बोले कल्ले राजन के राजा पानी तो हमें कहीं दिखाना नहीं है, उत्तर दिशा में बगली मर्रा रही और बिन पानी की बगली नहीं रहती है, पानी जमी हो गई थी। बोले कल्ले चल तो ले जा सुबह लोटा गड़ी लेके और चल अरे खुली जाए सुबह जन्म दे पाई खुली से जीत गए कि हां बाहर आराम से बिंदगत चले गए। तो काकिस्ता हाथों के जानवर लड़की राजन को ब्याई थी वो नदिया में स्नान कर रही थी।
2: अच्छा
1: नदिया में स्नान कर रही थी। तो सुताई अक्का ने कहा करो कि झटपट पानी पी के और मचो सचो भर के और पहुंच गए। बोले कल सुताई अक्का बोले कल ये राजन के राजा बोले कल उस तालाब में पानी ये तो ठीक है तुम ले आए। बोले कल हाथ जाती ना पूछो पानी पी लो तुम। बोले आप तो पानी जब पिए जब जब बात पूछ ले बात है क्या क्यों पानी जो मचो लिया हो ऐसा जल्दी हो थे को कि मचो सचो भर के आ गए। बोले कल महाराज कल वो तालाब है वो बड़ी अजीब का लड़की सफर रही एक तो उसके साथ हमारा मूर्छा छा के गिर पड़ी तुम तो सब मचो सचो भर लिया वो हम खुद की आसन मर जा रहे। अरे बोले कल बगरा भी सुबह पानी बगरा के तालाब पे पहुंच गए। तो तालाब पे पहुंच के माने वो कल्ले सुदायक का बोले कल्ले कहिए राजन के राजा बोले कल्ले इसको लड़की को पूछने तो जरूरी है जब मुंह बोले कैसे
2: सही है
1: जब पीछो करें अपन ताए को और मुंह करें ताला ताए को। बोले कल्ले कहो उन्हें कही

0: नव कक्का ने कही के
1: नहीं, राजन ने कही जाओ,
2: राजन ने कही जाओ,
1: राजन ने कही जाओ। हाँ, फिर कही उनने, अब बा भूले जल में ढाड़ी जो।
0: अच्छा,
1: अब बा भूले
0: लड़की जो नहा रही,
1: जो नहा रही बा बोल रही है।

0: कायका बोले कल राजन की राजा सुनो हमारी बात अभी से बोल दो ना।
1: सही है
0: अभी से बोल दो ना बोलो कब का बना दे वाला
1: बताओ
0: है सही कही बोले कल नहीं अबे तो हम इससे और बोलेंगे।
1: हाँ
0: अब राजा बोल रहे हो
1: हाँ
0: भूले मोस

0: कलिया ने खो बाता दी और सो लगे काहू के अरे द्वार जी। इन्हें गली बता दो सो काहू के द्वारे लगे
1: आप पहुंच जाए।
0: अब कहिए हाथ उठा के अगर बता दीजिए अब वह जल के भीतर हुई। अब इनको समझ में नहीं आ रही जल के जाए इनको बदल शरीर है कैसा मुंह करने माइक हूँ और पीठ करे इंताइक हूँ कई के अब जाइए बताया सुनने के बाद माँ से बोली

0: क्या बात मिल जाओ।
1: अच्छा
0: मिली ना बताई न बाने बदन काड़ो जल नीर में रही।
1: अच्छा
0: अपने पर्दा भी कर रही बस साहब उनने किसी गली तो पूछ ही नहीं गली पूछ के उनने घूरो बढ़ाओ गाँव के लाने तैयार। अब बाने सोची कि ये मुसाफर अगर पहुंचो जात तो गड़बड़ हो जाए बाने जल्दी पल्दी सफर और सफर खूर के और बाप ने जेल चली जो ने जी हती से जाते भवन द्वारे सतेगा को देखो तो ससुराल सुबने द्वारे उनने अब पहुंची घरे सुख गई घरवाऊ को बंदो। अब भाभी से बोली भी

0: भाभी ने कहा ऊंचे कलेला नंदी नीचे करो बातन जिन बतराओ और तुम्हारी आ गए चाला
1: अब लुबग्गा आ गए तुम
0: लुबग्गा। तो उनने फिर भाभी से कही अरे भाभी आज नाश्ता तुम न बनाओ आज हम बनाए
1: ऐसा
0: भाभी से कही। सुबह सुनने घरेला उतार के अपने नाश्ता बना दी के लाने तैयारी करी। अब इन दोनों ने कही चला
1: अच्छा
0: बोले कल देखो अपन को कगुआ गेल कुमार बना दी
1: बिल्कुल
0: अब भोजन नहीं करने भोजन नहीं करने इसके यहाँ वोरा थे जी
1: सही कह रहे
0: अब खुला खुला थे अब नहीं खुलो हमें तो सलाह हो रही दो जन की सलाह हो रही नाव की और राजन की। सुबह सब अच्छी से उन्हें व्यंजन की भोजन बने भोजन बना के और आज्ञा दे दी भोजन की लाना तो दोनों जने भोजन को गए भोजन को गए साफ सुनने चाहे एक लो चाहे खाई हुई चाहे दो खाई हुई और वहां से बना ठना ना जवाब ठोको
1: अच्छा
0: ठोकनी ठोकने ना तो भेद कैसे खोले वहां
1: सही है।

0: टाठी सरकार के माय कच्ची अब अभी खुल गओ के जई है
1: हां सही कह रहे
0: जब क्या बात
1: दादा के होते
0: जई है जब बाबा ने बात खोली सो बोल समझ गए सो उनने मां टाठी माटी सरकार के ओ बस सुता जा काने पे झटपट जो कछु राजन तेरी तो बाप बांधी ओ बाप नी बांधी ओ बस टाठी माटी जो कमे लगवा के कर ले काहे काहे राजन बोले कल अभी तक क्यों आया बोले कल भाज मैंने अपनी टाठी धोई वो आपकी धोई फिर मैं यहाँ
1: जैसे टाइम लगता
0: जैसे टाइम बोले कल सुन ले कल सिपता ना उन पाए वो अपन घूरो कस के तैयार हो इस पापन को मिलवा जाना इसको मिलवा जाना तो बस तैयार हो गए जहाँ से करा उनको तो उन्हें भज्जा घूरो कसो सब रात में घूरो कस रहा सो वो ऊपर को पले चवन पीट तने कस रहा
1: अच्छा
0: वो पले च पीट तने के तन दिन तो मुंगी आगे बड़ी आगे
1: हां हां ये मैं भी दे रहे थे
0: ये भी दे रहे थे ना क्योंकि कैसे
1: हां
0: जो सवेरे भाव जा हां तो बस जो राजन को हां साहब चल भी हो गए तो राजा का कले के क्या है जो ऊपर का पले च नीचे कस दिया गया अच्छा कस तो उन्होंने भज्जा छोड़ चार के दोनों राम के पास है जंगल झाड़ी वाले निकल निकल के भाभी पूरा पड़ोस की जनी ने दोहा रेशम डोरा पाट को रे जने दियो रे चाटे का

0: देखो रिश्तेदारी है वो जब तुम दिन चटकाओ और टूटने से जब जुड़े नहीं वो जुड़े सुर में गांठ पर
1: जाए
0: गांठ पर ये जाम है
1: नहीं गए
0: उनके ते रुक गए जो ने परोस की
1: हाँ परोस की ने कई जवाब
0: हाँ तो परोसन ने सोची कि अगर हम भोजन कराओ तो केर बेर को संग है
1: सही है
0: बेर बढ़ के जाओ
1: हाँ
0: तो उन्हें हदीसों जैसे कच्ची पुटिया पर मूत की वही रानास में ले गए
1: हाँ फिर कम ही कौन पुटे पार जाले गए
0: मैं कहूँ वही जहाँ उनकी राना सकती फिर पहुँच गए वही सतखंडा पे पहुँच गए तो अमन ने सोची रानी ने कि अगर भोजन भी है तो ये भूखी अब रात को है समझ गया ना हो तो हम भोजन नहीं ले जाए तो भोजन उनमें लगा थाली को भी पहुंची तो लगा फारी जो थाली पे चढ़ी भी तो बिस्किया पहनी थी भी तो वो बजो बिस्किया बजो उनने बिस्जा की आवाज की सुनकर मूर भूल गई बन गई पड़ोसन दुहा दे रही संक बाज

अरे आज नहीं तो अरे भोर जी, अरे अबे नहीं खाओ नहीं तो भोर खा लो, इसे तुम बोलना उनसे, नहीं कहीं बाने फिर दो जाकर कहो।

वो लोग कंस के बाद नाव से कही के बाद निकल अब जो दो है सुनो साधु ने साधु ने सुनो दोहा साधु के रामन से

0: जी उन शंख बजे से साधु जगे बम घले राजपूत अगर इतने में के बम घर रहो वो नहीं जग रहो तो कुछ कब पूछे
1: सही है का हो
0: का हो
1: कत्ते दुनिया भगत जा देर विश्वना का जाए।
0: अब जब इतनी बातें हो गई तो परोस में पतो होगा
1: हाँ
0: कि रानी राजा के पास में भी गई। अब फिर की दोहा कह रही है ये

0: से लड़की भाली रे सो मेरी पे ब्याए जी। अरे ऐसी सासों का काम किया थी तेरी कूखन बांझई हो जाती, और ऐसे सब कुछ जाए तो लड़की होती तो परोस मेरी पे ब्याह शादी कर देती।
1: तो
0: ये तो गड़िया है ना, सुबह पटक थार जब थार पटक के भी भागी आई सुबह मेरे में। अब रात को समझ जब कहाँ जा रहा है जो सवीरम हो सोने घोरो मस्को चलिए। सो ससुर साहब ने कही करी दीवान जी ऐसे नहीं चलो, हम आपकी स्वागत कर रहे और सब बात को बाहुलाओ और भोजन करो, भोजन करके हम आपकी पूजा कर रहे हैं। ठीक है, सुबह भी रहते डट गए, खाना खाओ, खाना खा के और पीना सुनने सजाई में बिदाऊ की कई वो में खाना पीना सब और महीना भर के लाने रखता खाती है जिन घरे चले गई। बस अब भी हती सो अब पीना हकावे बारे हती सो जैसे गांव के बारे करी तो उनमें मार जताई फिर भी भक्त छोड़ के अब खुद उनने हकाई अब सुताई अब काल कबाजी ने हकाई सुबह हका के वो बस सब कहीं ऐसी वर्ष चली हुई तो शाम हो गई से एक बमूरा को पूरो रहे से उतरे बस गए। शाम हो गई से बस गए, बस के में अब बोले कर ले सुनो सुधा का बोले कर ले का कर ले पापन को नहीं छोड़ जाने यही रुकता है। अब्बा सुन रही थी, बस सुन रही थी सुबह ने कही के ठीक है सुबह सताई अक्का से कही के सताई अक्का ऑर्डर दौरानी है के पति लगाओ तो सताई का अक्का गए से तीन पात्र में लगा एक अपन को एक राजन को एक रानी को। क्यों बे ये तीन पात्र में कहाँ खुल जाओ बोले कल एक आपको एक हमको एक रानी को। अरे बोले कल रानी की फार के फिर दिमाग रानी की फार के मार फिर अब मैं सोच पात्र लग के आई तो खाना खाओ, खाना खा के पड़ी पड़ी सोई। अब रानी ने सोची कि ये भगत तो हमें छोड़ के हैं इसे का करें से जिस सुबह घोड़े की पछाई की ईड़ रखी ईड़ बजट बार बटूर बंदी थी सुबह छोड़ के बाने पीने से मार लाए बटूर कि ये भगे तो जब ईड़ टूटे समय यहाँ का अगर हम सो गए आँख खुल जाए तो हम इसे कचु किया ले। सुबह सुनने पे तो घोड़ों भंसाई रात भाई वो बड़ा सुबह तनों वो तनी बटूर कहीं दूर सो नेक चावा पट्टों को घोड़ी में सुबह दूर पड़ी सो उनने कही रानी ने

चैनल दृष्टि हर में बुझा गई हमें, हम न जय गांव के रहे न बई गांव के रहे, अभी सुनल बारे के मेरे किसी चले गए, मैं अपने भवन को चले गए। अब रानी ने अति सुबह पीनस को बिग घर वाले और बाने हकाओ हकाओ को रानी को गाड़ी हकाऊ थी, मैं पीनस को हकाऊ थे रानी तो हका जो बजिया से कचुवती तो राजा गिलंद की बाग में ये जा रही सुवन ने भज्जा घर वाले नाय के टूटी माय की बोलनिया टूटी रानी बोली कर ले गई, कौन कहाँ की पापन आ गई कहती है तुमने, एक मोर रानी ने वो मालिन को भीतर अभी तो राजन की बेटी थी उसे कछु मोरन को कछु टूटो तो रही है की तो अपने इंतजाम में अपनी कुठज्जा में उन्हें दुकान रहे कहाँ रहे सो ऐसे ही कछु बिलाद दिना हो गए दुकान तो एक दिन अब उनकी बेटी हटी राजन की जमदीप नाव तो का नाव तो बेटी जमती जमती नाव तो बेटी को सो बिन बे फूलन की तुला तो लगती बा सुबह मालन रोजीना डाली लगावे और फूलन को ले जावे। सो राजन ने हकी सोची के मालन तो इतने आओ तो हम आज बगीचा घूमने आए तो बगीचा घूमन गए भी सोचे बार राजन की लड़की रहे तो राजन ने सोची कि ये तो काछी माछी की तो या है नहीं है तो कोई राजा की लड़की सुबह जैसे तैसे अपने घरे पहुंची सो घरे पहुंच पाँच के उनने कही अब्बा से कही मालिन से उनने कि माता जी रोज तो डाली तुम लगाओ आज डाली हमें लगाओ बादशाह ने हती सो राजन की पिया न्योती बाबे न्योता कंकुम अबे न्योता पिया रखो सो राजन ने सोची अब उनकी रानी हती बादशाह सो अपने उन्हें थारी लगाई दो उन्हें परसु बिजना की हवा कर रही रानी उनकी बादशाह की सो बनने सोची अगर बन तो हमारी खुलवा लिया उसी बन में ना छोड़ी आउती भाई ना करती हवा सोने हर सांस लगी सो बीजन ने सोची कि कोई बात में खरखसा है राजन की बात में कोई खरखसा है सुनाओ से पूछी जाओ बोले क्यों खवास का कब बोले कले कहिए राजा कले कारण का है ये को राजा हर सांस ले रहे भोजन नहीं कर रहे कले ये रानी को बन में छोड़िया और भाग गया सो उनने अति से घोरो उनने सजो और वीरन ने सजो और पहुंचे वो लेकर ले चलो बताओ कि ते कौन छाड़ में छोड़ी फिर जो रुख तरह छोड़े थे वही रुख तरह जीत गए दोनों जन नाव नहीं गए वे दो ही गए सो वो लेकर ले अब उनने हती सुबह गाड़ी पर पीनस की जो रास्ता थी वह धरी सो मालिन के पास भी पहुंच गए राजा गिलंद की बाग में उड़ गए पहुंच गए सो उनने कही ठीक है उतिया जाके इनने का किस्सा करो कि डीरा दो जन ने गए सो उड़ने भैया मालिन ने उन्हें घर आया बोले कहने क्यों रे कहाँ के हो परदेसी कैसी फिर रहे तुम जगह बात वो हमारे राजा सुन पे तो तुम्हें जान से मारा ले हाँ सुबह आराम से मालिन को साझा तो मालिन से पूछी सारी बात तो मालिन ने उन्हें सारी बात बता दी कि रानी जो है और रंग महल में पहुंच गई राजा गिलंद की ठीक है अरो कमाओ ने बादशाह तो बदमाश होते ही है तो कौन जो रूप काट को वो रूप काट उन्हें उपद्रव छाड़ी करी सो मालिन की

0: राजन बोली कले दो घोड़े वाले आए और भेजा के और बहुत परेशान कर रहे, उनमें सब नाश कर दो बगीचा को, तो उनमें छिड़ जा, चलिए तुमको राजा बुला रहे। बोले कले हाउ साहब, जब तो भी ऊंचे हटे भीलपोल की और जहाँ से वे सज बज के फिर गए वे अपने अपने घोड़ी लेके। बोले उनकी गैल में सलाह हो गई। बोले कले तुमसे बात करे से तुम मूर्ख काट दो और हमसे बात करे तो हम मूर्ख काट लेंगे। बोले ठीक है। सुबह गए सो राजन की बगल में एक ही बोले बैठो ही बोले बैठो। अब उन्होंने हतो एक बीजक राजा गिलन गया कि अगर जो बीजक जी न पहुंच जाए हम लड़की की शादी उसी के साथ करेंगे। तो अब उन्होंने की तो जब सलाह हो गई बस सका से काम लगाओ। अब वो रानी ने डेरा जाओ डेरा जाओ कि देखो भाई राजा गिलन ने जो बात हो बोली कि तो हमारी रानी बन जाओ। बोली कले नहीं ये राजा गिलन को बाग कटे चल जी और जी मकान गिले चल जी। सुबीर ने की तो ठीक है सुबीर जो बन जो काम लगो सुबीर अपने मजूरी खोने की जावे जावे। सुबह रानी जो बबी की अति से छाजे पे हो दातन कर रही थी सुबीर जग लाई थी बबी जग बबई लोटा के कर रखती दातन वो लोटा में लिखो है तो सुबह बीजक खो गए जो बादशाह ने बाँच ले बीरन मछले बादशाह में बीरन ने बात बोली कर ले ठीक है। बोली कर ले कहीं तुम तसला पटकत पटकत वो तो सार पांच ही की बढ़ रही और तुमने पहचान नहीं करी कछु तुम ना तुम सानो और हम झंडा रहे सुबह गए डारे सो आराम से गए डाल भी के लाने तनक तसला में से गिलाव पहुंच गए वो ही में दाव बेटी में दवा में जो राजा गिलंत की लड़की तो उन्हें अति सो अब तो खिलाड़ी है तो उन्हें बोई लोटा दाओ बोई लोटा उनमें दाओ सुबह ने अच्छा ले लाओ ये गेंद की बल्ला क्या और बल्ले लोटा उन्हें बाग में पहुंच सुबह सुनने फिर भेजो छड़िया पकड़ लिया उसे सुबह जब ये गए पकड़ा सुबह देख दाग के कर ले ये कौन मजबूर हैं ये तो कोई राजा है सर तो क्यों इनसे बोलत कैसे हैं। बोली कल महाराज तो नहीं है मंजूर संजू तो जो राजा पर बोली कल जा पर बोले पकड़ लिया बोले कल आ रहा है चलो अब बिने मिल गई थी वो बीजक उनने वहां से तो पूरो कर एक का दो मिल रही दो मिल रही नहीं तो भी अच्छे से लेकिन भाई फिर उनकी सलाह तो बात गई कि अगर तुमसे राजा बात करे तो हम उड़ काट ले हमसे करेगा तुम काट लो। सुबह राजा काउ समाप्त न कर गए चुपचाप बैठे रहे दरबार में भगिया एक दिन आ तो बोले मेरे को खिच्ची आके पहुंचे गए तो राजा ने कही कही। बोले कर ले कही साहब कहाँ के रहने वाले हो कैसे हो। बोले कर ले के दीखी सुन फिर वह लड़की की शादी करी उनने उनकी रानी ने दी हती बात से हो गई।
1: देखो दोस्तों जातों पर सब जन ने किस्सा सुनी है यानी कि कहानी खुद सुनी है और एक किस्सा को आनंद लाओ। अब एक के संगे संगे अपने दोस्त माता दिन को हो रहा आज के कार्यक्रम से जावे को समय तो अपने दोस्त खुद ही कार्यक्रम से जावे की अनुमति अपनी तपनी फिर हुई मुलाकात है कार्यक्रम में एक बेरा पे जब तक के लाने नमस्कार।

जी काकेरे अपन खा जी बताए अपने जीवन की सभी बातें और सभी अनुभव, तो सुनो जी काकेरे।

श्रोताओं को भैया अपने काशी राम की नमस्कार पहुंच जावे। और भैया आज हम आप सब जने के लाने एक बहुत ही नौ नौ सौ कार्यक्रम लेके आए हैं, जी को भैया आप सुनो और सभी पंच सुने। और भैया ये कार्यक्रम को नाम है सुनो जी का कह रहे, तो आज अपन बुजुर्ग दादा भैया की बातें करे और सुने। और एक क्रम में राम गोपाल दादा है, अपन इनसे बात करे।

0: तो भैया अबे सुनो, अपन सज्जन ने जो गीत और रजनीश दुबे जी ने कितने अच्छे नौनी तरीके से अपन गाओ के सुन बताओ है, और अपन सज्जन ने सुनो है। अब अपन बात करत है राम गोपाल कुशवाहा जी से।
1: दादा राम राम।
2: राम राम।
1: अपना दादा नाव का है
2: राम गोपाल।
1: तो दादा अपनी उम्र कितनी है आप?
2: हमारी उम्र 70 है।
1: अपन काके ले विवाह हो दादा?
2: केना के पूरा पतो ग्राम केना जिला की कमगा ऐसी नेवाड़ी मध्य प्रदेश।
1: तो अबे आप दादा का करे थे?
2: ये हल्को हल्को काम कर अपने ढो बच्चे देखे ना बस।
1: और
2: खराब वर्क का हम खराब बस किए काम वाम हम रह तुमने कर।
1: आप अपने परिवार वाहन से का के वो चाहते हो?
2: परिवार वाहन से का कहते विचार को जब तो जैसी समस्या है तो अपने भगत रहे।
1: आप जो बता दादा कि बुढ़ापे में अपन का कौन कौन सी दिक्कत आने लगत और का परेशानी दिक्कत आती है अपन का?
2: बुढ़ापे के तो देखो ना खाना मुड़ा एक बार देखो घाम लगा काम दौड़ नहीं पाओ नींद नहीं पाओ घूरी फिराट हर एक बात की मतलब मुश्किल दिखा दो।
1: और वैसे वो समस्या है अपनी?
2: अब वो समस्या जो बाल बच्चे खा रहा है तो भी हमें ले हम खा रहे
1: अपने मोड़ी मोड़ा अपने पास बैठ भी जाओ।
2: आओ बैठ जाओ जी ना आप पूछ रहे थे।
1: अच्छा
2: अस्पताल जाने
1: हैं। और अपने सेवा खुशामत के बारे में आप क्या कह सकते?
2: सेवा खुशामत सब करा थे जनाब ये बैठे अब बैठे भी है मैं तब लोग ठीक नहीं है चला फिर कर लगे थे
1: दिक्कतें हैं उनको अपन कैसे झेल सका था का कर सका
2: आप झेल सका तो मतलब बैठ वो है सीधी बात है पैसा जो खर्च तो ठीक है अरे कछु ना कछु ना तो 10-15 उसको तो खर्च है ही आदमी को मान के चलो कछु ना कछु वो 10 उठा के चल जाती है।
1: दिन भर आपको कैसे कटा था?
2: दो बच्चे उनका दिमाग लड़ा दे सिगारे सिगारे अपने छाने में चल बस।
1: अच्छा और अबे तो आपका दिक्कत दिखावे की तो दिक्कत कछु है नहीं है ऐसी? जैसे का आप बुढ़ापे की
2: बुढ़ापे मतलब
1: दिक्कतें आदमी का
2: दिक्कत तो देखे के नहीं होती नहीं है तुम्हें जो कागज है जो जो जो नहीं बांस पा रहे हम मतलब और उसी है दिखा कगदा नहीं बांस पाऊ मेरे दिखा सकते।
1: और अच्छा ऐसी कोनो अपनी परेशानी है जो आप ना कह सकत हो? खावे पीवे की आपकी का है?
2: खावे पीवे कोई तकलीफ नहीं है जो भाई में है तो खा।
1: अच्छा अपने माता पिता की सेवा में और बेटी में का अंतर है?
2: पहले इज्जत रहती समय अनुसार इज्जत नहीं आया और पापा जाना फेरी पापा जाना फेरी के मतलब अपनी अपनी हो चाह रहा हूँ आदमी हमारा वाले बच्चों जो चीज मिल जाए हमारा मिल जाए दूसरी की जठानी ना मिले दिवानी ना मिले ऐसी समस्या है मतलब अभी के समय में।
1: तो अपन का के वो चाहते हैं कि कैसे हो चाहिए अभी के सब का
2: जब जो हो चाहिए शांति हो चाहिए प्रेम हो चाहिए सब में बड़ा प्रेम प्रेम है तो उसे कबू आपत्ति नहीं आए प्रेम है तो सब मतलब आपत्ति नहीं आए उसे शांति है शांति से मतलब हरी सुविधाएं कबू आपत्ति नहीं आए।
1: अच्छा जो आपने प्रेम की बात कही तो ये प्रेम में और काका छिपो अगर प्रेम ले तो काका अच्छो हो सका
2: प्रेम जो अपने मतलब ईमानदारी काम प्रेम में ओवर का जो काम नहीं करा प्रेम मतलब जीव अजीव काम प्रेम
1: लड़ाई झगड़ा ना उज्जे पैसा टका खर्च ना उज्जे
2: हाँ घरे पैसा रे मतलब जो मतलब लड़ाई झगड़ा वो काम नहीं।
1: तो अपनो काके वो है रेडियो में जो भी आप सुने आदमी कैसे अपने बाप मताई की सेवा करें चाची और कैसे रहे चाची आपका कंचा सब जनन से आपको काके वो है
2: बात तो बात खूब बड़ी है मतलब बाप मताई की सेवा करें
1: तो वही बात तो, बड़ी बात तो, मतलब शुरू से आप
2: तीर्थ यात्रा ना कछु
1: यही बात आप यही बात पूछना चाहूंगा
2: अच्छा
1: शुरू से बता दो आप काके वो चाहते
2: जो अपने बाप मताई को

0: माने उसे भगवान को माने सब इज्जत ले प्रेम ले लक्ष्मी जी दे सब मतलब नहीं की रूप है बाप माता को छोड़ाओ तो तुम्हारे बाल बच्चे छोड़ा मतलब आगे चली जाइए मतलब
1: अबे आप तीर्थ यात्रा की बात कर रहे थे।
0: तीर्थ यात्रा मतलब जैसे पैसा है देने बाल बच्चे चले जाए तीर्थ यात्रा हुआ अब पैसे नहीं है तो जाकर अगर है जो मतलब है जब कहो के चले जाओ पैसे आगे चले जाए अब जैसे पैसे ही नहीं आता तो कहाँ जा क्या करे रोटी नहीं खा पा रहा है आँख से कमजोरी हो गई पैसा खर्च को मिल नहीं रहा है पेंशन बन जाए तो अच्छी बात है।
1: और का के वो चाहूँ
0: जी चाहू के आराम चाहू बस मिल जावे पेंशन बन जावे तो पैसा खर्च को जाऊ लड़का वाले अपने बाल बच्चे को संभाले खाने दी जब 3-4 रुपए को महीना मिल गए तो अपने उम्र खाद चलाते हैं।
1: ठीक है दादा जब आपने अच्छी जानकारी दी तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो भैया अबे अपन खान ने बुढ़ापे की सारी बातें बताई हैं कि ई बुढ़ापे में कौन कौन सी दिक्कतें हैं का परेशानी है और अपनो जीवन ई उतरती अवस्था में कैसे कट रहो है और एक बात और इनने अच्छे तरीके से बताई है कि अगर पैसा होते तो हम घूम लेते कोनो आमदनी हो जाए या को हमें पैसा दे रखे चारों धाम करें। और भैया ये तो बातें अपनी अबे हतीसो सब जन ने सुनी ही है लेकिन आप लोग जा भी कह रहे उन्हों को भैया बिल्कुल बात नहीं मैं बताएं तो अपन और सुनत है एक गीत खो और ये गाँव है भैया वंदना अहरवाल ने और इनने देखो इस शब्द में काका गौवा के गोबर मंगाओ यानी गौ के गोबर मंगा के जी अपने और चौक पुरा रही हैं और शुभ संदेश की बातें कर रही हैं और संदेश दे रही हैं। तो भैया अपन सुनो सबई पंच भैया सुनो।

भैया अपन और सुनत है एक गीत को, जी को गा रहे हैं उमा शंकर नामदेव, और जिनके बोल हैं सब देवन में सबसे पहले प्रथम पूज मनाएं। तो भैया आप सुनो और सभी पंच भैया सो सुने।

बात हो भैया, अबे सुन रहे थे जो कार्यक्रम, सुनो जी का कह रहे। ई कार्यक्रम में आप सब जने जानते ही हैं कि हर रविवार को बूढ़े पुराने दादन की बातन को सुनत हैं, जिनने अपनी बातें बताई हैं, कितने अच्छे तरीके से अपनी बातें बताई हैं। और ऐसे ही हम हर रविवार को लेके आउ थे कार्यक्रम को, सुनो जी का कह रहे। अगर आप और अपने दादा पिताजी की अच्छी देखभाल करत होवे तो हमें जरूर बतावे, और अगर दादा अपने सुख दुख की बातें करें चाहू थे तो हमें सो बतावे भैया, हमारे पते और फोन नंबर पे। और देखो बतावे के लाने लिख लो भैया हमारा पतो और फोन नंबर। तो भैया हमारा पतो है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तगेला के पास ओरछा। अब ई बातन के संगे संगे अपने दोस्त काशीराम को होत है समय कार्यक्रम से। तो भैया देव आज्ञा, और यही कार्यक्रम में फिर से अपनी मुलाकात हो जाए, तब तक के लाने आज्ञा दो अपने भैया काशीराम को। तो नमस्कार।

काकेरे अपन खाजी बताएं अपने जीवन की सभी बातें और सभी अनुभव। तो सुनो जी काकेरे।

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप आ गए इस वक्त अपने दोस्त माता दी के संग में। और साथियों, हम लेके आ गए आपके लाने जो प्यार और कार्यक्रम मेरी बुंदेली मेरे गीत। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं प्यारी प्यारी सी फरमाइशों को।
1: हेलो
2: सर, नमस्ते।
1: नमस्कार नमस्कार भैया, को बोल रहे?
2: सर
1: हाँ, दीनदयाल भैया कैसे हैं?
2: ठीक है सर, बढ़िया है।
1: बिल्कुल दीनदयाल भैया, आपको मेरी बुंदेली

0: बहुत बहुत स्वागत है, बताओ कौन सा गीत सुने हो? ऊंचे पहाड़न पे बैठी मैया रतनगढ़ वाली।
1: जी सर।
0: चलो भैया दीनदयाल भैया, हम आपको जरूर सुनवाए हैं जो गीत, और कहा हो रहा अपनो?
1: बस बढ़िया है सर, पानी वानी लगा रहे खेत में।
0: चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है आप ऐसे फोन लगा उतरा बुक
1: हैं। ठीक है सर,
0: नमस्कार भैया।
1: नमस्कार नमस्कार सर।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: नमस्कार नमस्कार महेश भाई, कैसे हैं?
1: बढ़िया है सर, बढ़िया है भैया। सब आप लोग के पाए, ऊपर वाले के पाए, और सब किसी बहुने बहुने वाने हो गई। पानी आने लगा।
0: चलो बहुत अच्छी बात है। तो मेरी बुंदेली मेरे गीत में कौन सा गीत सुने हो? प्रियंका
1: आज हम गीत सुने प्रियंका किशोरी और छोटे राजा।
0: बुलबुल जी की आवाज में।
1: हाँ
0: चलो ठीक है। अच्छा, गीत के बोल बता पाए आप?
1: तो एक गीत कोई गाओ तो सुनवा दीजिए थोड़ा।
0: अच्छा चलो
1: बोल
0: ठीक,
1: तो हाँ, बोल याद नहीं आ रहा है।
0: चलो ठीक है, हम उनकी आवाज में आपको गीत जरूर सुनाए।
1: ठीक है भैया, जय राम जी की।
0: जय श्री राम, जय श्री राम।

भगवान शंकर की बारात पहुंच गई महाराज हिमांचल के। जब सर्पों का श्रृंगार हुआ भगवान शिव का, तो वहां देखो एक बार गोरा

नाद या भागा। भगवान शिव का सब परिवार बिखर गया तो एंड में क्या होता है? बिखर गया परिवार।

अंतिम फल कहना है कि मांग लाल है बिंदिया फाल है कंगना कलाई में और चंद छवि

0: शंकर से सगाई में मस्त रहे चलम।
1: हेलो बुंदेल खंड नंबर 10 नंबर 4 सर।
2: बिल्कुल भैया बिल्कुल, मेरी बुंदेली मेरे गीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताओ कौन सा गीत सुने हो?
1: हमें सर वो सुनवा दीजिए, कचरिया जी को भाव ब्याह। हम अपने गांव जुगियाई से बोल रहे हैं, सतीश साहू।
2: जुगियाई से सतीश साहू जी?
1: जी हाँ सर।
2: बिल्कुल सतीश भैया, आपको जरूर सुनवा है जो गीत है।
1: हाँ सर, और सब बढ़िया है सर?
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बढ़िया है?
1: हाँ सर, सब राम राजा की कृपा है, आप लोगों की सब बढ़िया है।
2: चलो बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे रेडियो बुंदेलखंड सुना तो हम आपकी फरमाइश जरूर सुनवाए।
1: ओके सर,
2: नमस्कार भैया जी।
1: नमस्ते।

0: हेलो
1: माता जी भैया को नमस्कार है।
0: नमस्कार नमस्कार, कहाँ से?
1: मैं बाबू यादव सारनाथ वाराणसी से भैया।
0: बिल्कुल बाबू भैया जी, मेरी बुंदेली मेरे गीत में आपको बहुत बहुत स्वागत है। बताओ कौन सा गीत सुने हो?
1: हमें सर वो वाला भजन सुना दीजिए।
0: कौन सा?
1: साथी मन से जो कोई प्राणी नगर ओरछा आवे
0: जी,
1: वही वाला सुना दीजिए।
0: चलो ठीक है बाबू भैया, हम आपको जो गीत जरूर सुनवा रहे
1: हैं। धन्यवाद भैया आपका।
0: बिल्कुल, आप ऐसे सुनते रहोगे जो बुंदेलखंड। ठीक
1: ठीक है।
0: नमस्कार
1: नमस्कार।

0: साथियों, अगर आप भी सुनना चाहते हैं ऐसी ही प्यारी प्यारी सी फरमाइशों को, तो उठाइए फोन और लगाइए हमारे इस नंबर को। साथियों, हमारा नंबर है
1: 9425147126।
0: बिल्कुल साथियों, तो उठाइए फोन और लगाइए हमारे इस नंबर को, तो सुनिए ऐसी ही प्यारी प्यारी सी फरमाइशों को।

गलियों गलियों फिरता हूँ, कब से जब से इस हसीना ने, जब से इस हसीना ने मुझको आंख मारी।

0: जे देवी है तो हम भी पुजारी से कम नहीं है। और पुजारी हुए जब तो अगरबत्ती खोन से देवी के लगा प्रसन्न हुई है देवी काय और कहीं ना
1: एक तरफ ये देवी है दूजा मैं पुजारी हूँ।

0: कि ये चांद तू इतना मत चमक, ये चांद तू इतना मत चमक, मैंने भी कई चांद देखे हैं और तुझ में तो दाग है लेकिन मैंने भी दाग देखे हैं।
1: लेकिन कहना है हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, जज्बात की जिंदगी हम जिया नहीं करते, वो तो तुम हो जनाब, वो तो तुम हो कि तुम्हें मैंने अपना दिल दे दिया, वरना किसी को अपना दिल दिया नहीं करते।
0: तो कहना है आपसे मैडम कि हर शख्स यार नहीं होता, हर शख्स यार नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता, ये तो दो दिलों के मिलने की बात है, वरना सात फेरों में भी प्यार नहीं होता।
1: लेकिन आजकल ऐसे होने लगो, बताए कैसे यारो मोहब्बत मत करना, यारो मोहब्बत मत करना, क्योंकि मोहब्बत में हर चीज पराई होती है। यारो मोहब्बत मत करना, प्यार से प्यार मत करो, जब तक प्यार तुमसे प्यार ना करे, और जब प्यार तुमसे प्यार करे तो जनाब तुम प्यार से इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि प्यार किसी और प्यार से प्यार ना करे।
0: जब सतली कहना है हमने इतना प्यार करो, मालूम कितना
1: कितना
0: कल तलक।

कृष्ण भगवान हनुमान ने आई थी, तो भगवान ने क्या उसके आंचल से जहर लगे तो जहर पिलाने के लिए कि मर जाए भगवान। तो क्या बोले

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम फरमाइशी में। और साथियों, हमारी फ़ोन लाइन खुल चुके हैं और आप अपने पसंद के गीतों को सुनना चाहते हैं तो लगाइए नंबर। नंबर है हमारा 9219207749। इस नंबर पर कॉल करके अपने पसंद के गीतों को सुन सकते हैं।

0: राजू यादव कहाँ से बोल रहे भैया?
1: हम बोल रहे ग्राम अप्रैका तहसील सरीला थाना मुस्करा जिला हमीरपुर बुंदेलखंड से।
0: क्या बात है, बताओ कौन सा गीत सुनने आज फरमाइशी कार्यक्रम में?
1: फरमाइशी कार्यक्रम में सर जी अब गाना सुनवा दे, चूड़ी मजा न देगी।
0: चूड़ी मजा न देगी
1: जी, कंगन मजा न देगा।
0: अच्छा,
1: क्योंकि आज हमारे कुछ मित्र इस समय बगीचे में बैठे हुए हैं। और बारिश तो हमारे राज क्षेत्र में 100% हो चुकी है।
0: 100%?
1: 100%।
0: क्या बात है, वाह, बहुत अच्छी खुशी दे रही है आपने।
1: दो दिन तो खेत में ट्रैक्टर चल ही ना पाए सर जी।
0: क्या कह रहा है?
1: दो दिन ट्रैक्टर खेत में ना चल पाए, बुवाई ना हो पाए। दो दिन
0: बुवाई नहीं हो पाए और इतनी तेज बारिश हो गई अपने यहाँ।
1: हाँ भैया,
0: चलो आपके पसंद को जो गीत सुनवा देंगे आपको।
1: हमने तो मूंगफली की बुवाई कर दी है भैया, सो तैयार हो जाए, तैयार हो जाए 120 दिन में तैयार हो जाए, सो आपके भेजवा दें।
0: हाँ ठीक है, आप ही लेके आओगे तो ही हो रखेंगे अपन।
1: अरे वो तो लेके आए तो स्टूडियो में बढ़िया चटनी, कैदा की चटनी के साथ खाएंगे।
0: ठीक है साहब, आपको इंतजार करें हम जो।
1: हाँ भैया, राम राम।
0: राम राम भाई साहब।

0: एक बार फिर से अपना बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक और साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कौन बोल रहे हैं सर?
1: अरे नहीं भैया, शावर सपेन प्यार है, नमस्कार
0: यार। बड़ा आपको भी नमस्कार, क्या हाल चाल है भाई साहब?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ शायद, और गर्मी का आनंद लेते हुए आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ बुंदेलखंड ओरछा पर। आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति सुधासी मसवासी महेश भैया, आप कैसे हैं?
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपका इंट्रोडक्शन सुन के दिल बाग बाग हो जाता है।
1: धन्यवाद धन्यवाद। इस चमचमाती हुई धूप में, गरम गरम हवाओं के बीच में, रिम झिम गीतों की फुहार बुंदेलखंड ओरछा से महेश भैया के साथ में जब होता है आनंद ही आनंद आ जाता है।
0: क्या बात है, आपका सम्मान, आपका प्रेम, आपका स्नेह, यही तो हम लोगों को एक दूसरे से बांध के रखता है सर।
1: जी बिल्कुल, ये तो आपसी स्नेह प्रेम है, रेडियो और श्रोताओं के बीच में संबंध अच्छा बना रहता है, एक चुंबकीय आकर्षण बन बन जाता है और हम बरवक्त आपके बुंदेलखंड ओरछा की ओर पीछे चले आते हैं।
0: बिल्कुल, बताओ कौन सा गीत सुनने अपन हो आज?
1: बस थोड़ा सा मौसम के अनुकूल एक गीत सुना दीजिए। मौसम का जादू है मिठवा, ये तो मौसम का जादू है, कहीं धूप कहीं छाया है, कहीं बादल है कहीं बारिश है, लेकिन हमारे मथुरा वृंदावन में चमचमाती हुई धूप है, बारिश के नामों निशान नहीं है। पिछले शनिवार को बारिश हुई थी एक घंटे दो घंटे, लेकिन इसके बाद धूप ही धूप है।
0: बिल्कुल, बहुत बढ़िया, इतने तो खूब पानी बरस रहा हो दम से।
1: जी जी, मध्य प्रदेश और आपके बुंदेलखंड में काफी वर्षा हो रही है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलो आपको सुनवाते हैं आपको पसंद को जो गीत।
1: जी इधर धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार
0: नमस्कार नमस्कार।
2: Nine, eight, seven, six, five, four, three.

0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक और साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, कौन बोल रहे हैं सर?
1: मैं जी काराम जानना महाराष्ट्र संसद कार्यक्रम तो बहुत शानदार बारदार दर्जेदार जिंदार होते सर, मुझे बहुत पसंद है सर।
0: बहुत पसंद है
1: जी सर, बहुत पसंद है सर आपके कार्यक्रम।
0: क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना स्नेह इस कार्यक्रम को दे रहे हैं।
1: जी सर, जी सर, मुझे बोलो
0: बारिश हो गई
1: जी सर, हमारे महाराष्ट्र के अंदर रुक कर बारिश हो गई सर, हमारी किसान भाई की फसल बहुत अच्छी है सर।
0: अच्छा
1: जी सर, जी सर, जी सर,
0: चलो बताओ कौन सा गीत सुनने हैं।
1: मुझे बुद्धनी खंड कार्यक्रम में जो सुना है सर, बेटा बादल ही बरसता है, डर कुछ ऐसा लगता है, ये गाना सुना दो सर।
0: ठीक है साहब, आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का जो गीत।
1: धन्यवाद सर, धन्यवाद।

0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक और साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं सर?
1: राम राम महेश भैया।
0: राम राम भाई साहब, कौन बोल रहे हैं?
1: बाबू यादव बोल रहे हैं बनारस से।
0: बनारस उत्तर प्रदेश से।
1: जी भैया।
0: कैसा है उत्तर प्रदेश का मौसम?
1: बहुत बढ़िया महेश भैया, इस समय बारिश का महीना हो गया है, कल से बारिश हो रही है, आज ही सवेरे हुई थी बारिश, अच्छा लग रहा है।
0: बिल्कुल, आप तो बनारस सीधा काशी विश्वनाथ जी के प्रांगण में हैं और काशी विश्वनाथ जी की बहुत ही असीम कृपा रहती है बनारस में।
1: जी भैया, जी भैया, बहुत सही कह रहे हैं, बाबा विश्वनाथ कृपा तो बनारस में रहती ही है।
0: हाँ, जब वहाँ पे वो साक्षात विराजमान है तो कृपा ही कृपा बनी रहती है उनकी।
1: हाँ हाँ बिल्कुल, बनारस वाले बहुत मस्त में रहते हैं, मस्ती में रहते हैं।
0: बनारस वाले वैसे ही मस्ती में रहते हैं।
1: हाँ वैसे ही मस्ती, तो उनका तो मस्ती में रहना ही रहना है।
0: हाँ, बनारस बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत जगह है, बहुत।
1: और महेश भैया, बनारस के बारे में एक चीज बहुत बढ़िया बात कही गई है कि बनारस कभी सोता नहीं है।
0: सोता नहीं है?
1: हाँ, जब देखिए 24 घंटे चार बार आना जाना लगा रहता है।
0: अच्छा।
1: हाँ,
0: ये तो बहुत बड़ी बात है।
1: और देखिए वहाँ शमशान घाट में भी वही किस्सा है, 24 घंटे लाशें जलती रहती है, कभी बंद नहीं होता है, 365 दिन कभी बंद नहीं होता है।
0: बताइए।
1: हाँ,
0: बनारस के कौन वैसे ही फेमस है?
1: हाँ
0: चलिए बताइए, कौन सा गीत सुनोगे आज?
1: आज मेरे भैया हमको जुर्माना फिल्म का गाना सुनवा दीजिए, सावन के झूले पड़े हैं तुम चले आओ।
0: क्या बात है, बहुत ही पुरानी पिक्चर है, 1989 में ये पिक्चर आई थी।
1: जी भैया, जी भैया, बहुत बढ़िया गाना भी है।
0: चलिए आपको सुनवाते हैं और लोगों को भी सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: नमस्कार महेश भैया।
0: नमस्कार।

0: और साथी हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: सर मैं गुजरात राजकोट से पार्थ बात कर रहा हूँ, आप कैसे हैं?
0: मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं पार्थ जी?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर।
0: कैसा चल रहा है गुजरात में पानी
1: अभी
0: पानी?
1: तो मौसम बस सुहाना है, बारिश झमाझम हो रही थी, कल से बुधवार से लेकर आज तक बहुत ज्यादा बारिश हुई है और अच्छी बारिश हुई है।
0: क्या
1: आपके
0: बात
1: यहाँ
0: है,
1: बताइए।
0: हमारे यहाँ भी काफी

0: अच्छी बारिश हो गई है, लोगों की बोनी भी हो गई है, तो काफी किसान भी खुश हैं और बारिश भी हो रही है।
1: जी हमारे यहाँ तो गड्ढे बन गए हैं सर, रास्ते थोड़े वो हो गए हैं हमारे शहर में।
0: अच्छा,
1: हाँ बारिश की वजह से इतनी बारिश हुई है।
0: क्या बात है, बताइए बारिश में कौन सा गीत सुनोगे?
1: आज मैं गाना सुनना चाहता हूँ सुर और काटे मूवी का, कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल जी की आवाज में, पहली बारिश में और तू दूर से भी खुशबू आए।
0: क्या बात है, बहुत ही अच्छे गाने को आपने चयन किया है, आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: थैंक यू सर।
0: धन्यवाद।

0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं, एक और साथी हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, कौन बोल रहे हैं सर?
1: जी भैया नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं सर?
1: जी हम आपके नियमित श्रोता साथी योगेश जांगरे बोल रहे हैं, बेनतर छत्तीसगढ़ से।
0: जी रमेश भैया क्या हाल चाल है आपके?
1: बढ़िया है, अच्छे हैं।
0: बताइए कौन सा गीत सुनेंगे?
1: फिर वो नमक हलाल फिल्म सुना देंगे, आज रपट जाए तो हमें न उठाइए।
0: ठीक है साहब, आप कौन सुनवा रहे हैं, आपके पसंद का दौर? सब बढ़िया है,
1: बाकी सब ठीक है, बारिश भी होने लगा है।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी जगह बारिश हो रही है, बारिश का आनंद लीजिएगा और इस गीत को सुनिएगा।
1: जी
0: नमस्कार
1: जी। अरे अरे।

0: बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक और साथी हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, कौन बोल रहे हैं?
1: भाई भाई साहब आपको सभी श्रोताओं को नमस्कार। राजेश आ रहे हैं जिला मोहम्मद
0: जी। भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं भाई साहब? पानी वानी गिर गया क्या नहीं अपने यहाँ?
1: पानी तो गिर गया।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अपने यहाँ ठीक ठाक बारिश हो रही है।
1: बुवाई भी 100% हो गई हमारे।
0: बहुत बढ़िया है, बुवाई भी हो गई है, पानी भी गिर गया है, तो किसान परेशान है, जो बहुत अच्छी बात है।
1: जी ना बहुत।
0: कौन सा गीत सुनो आज?
1: आज सुनवा दो बरसात के ऊपर है मोहरा फिल्म को।
0: सुनवाते हैं आपके पसंद को जो
1: भाई।
0: कल गिर गया पानी,
1: कल ही हो पहले गया
0: रात में गिर गया, रोज गिर रहा है आज।
1: भी क्या बात है।
0: चलो सुनो आपकी पसंद को जाएगी।
1: जय हम भाई।

0: स्वागत करते हैं। एक और साथी हमारे साथ जुड़े हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं
1: जी? नमस्ते सर जी, मैं महाराष्ट्र हिंगोली जिला कलमदुरी तालुका मोहन सिंह ठाकुर बात करे सर जी।
0: जी मोहन सिंह जी, क्या हाल चाल है आपके?
1: बहुत ही बढ़िया है, एकदम मजे है, परेशानी कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे भैंसा चरा रहे है, उनको हरे हरा हरा जो घास लंबी लंबी हो रही है, बारिश भी वैसी हो रही है और बहुत मस्त जैसे दिन कट रहे हैं सर जी हमारे।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। कौन सा गीत सुनने आज?
1: गीत टिप टिप पर रहा है पां शुरू हो रही है, माने या ना माने कि तू मेरी हो गई है। ये गीत है, फिल्म का कुछ नाम नहीं आ रहा सर जी।
0: ठीक है साहब, आपको सुनवाते हैं आपके पसंद का जो गीत।
1: थैंक यू, धन्यवाद सर जी।

0: is the Google AI Professional Certificate.
1: Start here.

0: है सर?
1: झांसी थाना रक्षा ग्राम बठौलिया से प्रीतम सिंह यादव बात कर रहा हूँ सर।
0: जी प्रीतम भैया, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो?
1: बस बढ़िया है सर, बारिश नहीं हो रही।
0: बारिश अपने यहाँ हो तो रही?
1: हो रही लेकिन अभी थोड़ी कम है, बावनी के हिसाब की नहीं हो रही अभी।
0: अच्छा, हो जाए अबे तो का शुरुआत है कि बारिश
1: हाँ
0: की?
1: बात है।
0: बताओ कौन सो की सुनो आज।
1: सुनेंगे आएगी बरसात तो किधर जाएंगे।
0: आएगी बरसात? और सब बढ़िया है?
1: हाँ और सब बढ़िया है, बस गर्मी से राहत मिल गई, थोड़ा बहुत जो है तो पानी गिर गया तो गर्मी से राहत मिल गई।
0: अच्छा चलो, आपको सुनवा रहा है आपके पसंद का जो भी।
1: जी सर, धन्यवाद।

0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक और साथी हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, कौन बोल रहे हैं?
1: जी आदरणीय सर को नमस्कार प्रणाम करता हूँ। संतोष कुमार राव मरिया मध्य प्रदेश से बात कर रहा था।
0: जी नमस्कार संतोष भैया, कैसे हैं आप?
1: सर बहुत अच्छे हैं, लेकिन मन में ठेस पहुंचता है तब जब किसी की वाणी का हमारे मन में प्रभाव हो जाता है। घर के किसी लोगों की जब बातें हमारे दिल को चुभ जाती है तो मन बिल्कुल रोने को व्याप्लुत हो जाता है।
0: नहीं आप हिम्मत, क्योंकि आप क्योंकि बहुत सालों से हमारे साथ रेडियो के साथ जुड़े हैं, एक परिवार है, तो बड़े भाई होने के नाते या छोटे भाई होने के नाते सलाह देंगे। परिवार अपना है और उसको साथ लेके चलना है। थोड़ा बहुत होता रहता है तो हमें ये चीज़ें थोड़ा नहीं करना चाहिए।
1: जी सर, लेकिन अपने से ही खाई हुई चोट ना दिल को छू जाती है और ऐसा ही होता है हमारे परिवारों के साथ। परिवार में अनबन के जब माहौल होता है तो दिल में थोड़ा सा आपत्तिजनक एहसास भी हो जाता है, तो ऐसा ही आज माहौल मेरे साथ भी हुआ। थोड़ा सा किसी ने मतलब वाणी पर अपने नियंत्रण ना रखते हुए शब्दों का चयन किया तो मुझे बहुत ज्यादा बेकार महसूस हो रहा था सर अभी।
0: नहीं नहीं ऐसा कुछ मत सोचिएगा, ये सोचिएगा ठीक है जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है वो भी अच्छा होगा।
1: जी सर, जिंदगी में मतलब अगर संवाद का देखा जाए तो रेडियो बुंदेलखंड ने हमें बहुत कुछ सिखलाया है, इससे हमें आज प्रेरणा भी मिलती है। जैसे आपने सहनशीलता का जो मंत्र दिया इससे भी हमें सहानुभूति मिलती है। पर जिंदगी में कुछ ऐसे समय भी आते हैं जब व्यक्ति अपने आप को अकेला पहन महसूस कर पाता है। सर
0: कोई अकेले नहीं है, हम सब लोग आपके साथ में है। सभी लोग आप पे आवाज दीजिएगा, सभी लोग आपके साथ रहेंगे। बस यही है कि कुछ चीजें आती हैं जाती हैं, होता रहता है। संसार सागर है, समाज है, घर रिश्ते हैं, सब चीज होती रहती है।
1: जी सर, और जब ठोकर लगती है तो दिल में थोड़ा सा एहसास हो जाता है। बहुत ही पैसा गाना है, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल रही है। गाना बजाइएगा तो मुझे थोड़ा सा सुकून जरूर मिलेगा।
0: बिल्कुल, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: जी सर, बहुत बहुत नमस्कार।

0: देखें आप,
1: हो हाथ में ले तो बीमारी फैले अनेकन अनेक।
0: अगर हाथ गंदे होंगे बीमारी फैलेगी, पानी में जाएगी गंदगी जाएगी। सुने आप,
1: हो हाथ में ले तो बीमारी फैले अनेकन अनेक। हो तन मन की हानि हो भारी हैरानी, हो तन मन की हानि हो भारी हैरानी। हो कर लो विवेक, कर लो विवेक, हाँ कर लो विवेक।
0: और

आखिर में कहे नाथ काशी सुनो हिंदवासी मई हो या जून। अगर किसी को देना है उपहार में तो ऐसी बात दे दो जिसमें समझ में आए।

0: संसार।
1: और कहने लगी कि अगर मैं होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बढ़ाती, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती और कहने लगी,

कि अपना पर्यावरण बदल रहा है। आज भी अभी भी समय है कि हम इस पर्यावरण के प्रति अभी भी जागरूक हो और अपने साथियों से भी कहें कि आप भी जागरूक हों और साथ साथ में लोगों को भी बताएं कि अब हमें पर्यावरण को बचाने के लिए संकल्पित और दृढ़ संकल्प हमें लेना चाहिए पर्यावरण को बचाने के लिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं कि पर्यावरण अपना बदल रहा है और इस पर्यावरण का बदलाव ये संकेत देता है कि पर्यावरण जो आज हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन बदलता चला जा रहा है, इसका कारण क्या है। कारण हम और आप सब जानते हैं कि वृक्षों की अंधाधुंध कटाई, साथ में कार्बन जो निकलता है गाड़ियों से निकलने वाला, फैक्ट्रियों से निकलने वाला कार्बन जो हमारे शरीर को भी नुकसान करता है, साथ साथ में पर्यावरण को भी बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है। तो ऐसे में हमें सोचने की बात है कि हमें इसको किस नज़रिए से देखना होगा। आज के हमारे इस कार्यक्रम शुभ कल में आज हम कार्बन मुक्त दुनिया के लिए शहरी पहल में तेजी से लाना ये हमें सोचना होगा, क्योंकि अब पृथ्वी दिवस भी है, अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस इस ग्रह और उन सभी जीव प्राणियों जिन्हें इस आश्रय प्रदान करता है और खुशहाली के प्रति उत्पन्न चुनौतियों के बारे में वैश्विक एवं जन जागरूकता पैदा करने का अवसर प्रदान करता है। यह दिन एक सामूहिक जिम्मेदारी को दर्शाता है जिसकी आवश्यकता प्रकृति और धरती के साथ स्वभाव प्रोत्साहित करने के संबंध में 1992 की रियो घोषणा में जताई गई थी। इसका लक्ष्य मानवता के वर्तमान और भावी आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण संबंधी जरूरतों के बीच संतुलन कायम करना। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2009 में पारित प्रस्ताव संख्या जो हम बताने जा रहे हैं 63/278 के जरिए 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस मनाने का निर्णय किया गया था। और भारत विश्व में सबसे बड़ी शहरी प्रणाली में से एक है, जहां पर 37.70 करोड़ लोग शहरी क्षेत्र यानी 2011 की जनगणना की उसकी अपेक्षा पे बता रहे हैं, जो कुल आबादी का 33%। अनुमान है कि 2030 तक भारतीय शहरी जनसंख्या के स्तर पर करीब 40% बढ़ोतरी होगी। इसकी आबादी 58% यानी 58 करोड़ हो जाएगी। इस दौरान 2015 से 2030 की अवधि में भारत की शहरी आबादी में 16 करोड़ लोगों की वृद्धि होने का अनुमान ऐसा लग रहा है और जताया जा रहा है, ऐसा हमारे वैज्ञानिक कह रहे हैं। विशाल आबादी के कारण भारत वर्तमान ग्रीन हाउस गैसों का सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाले देशों में शामिल हो गया है। 2019 में जब भारत ने कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 3.7 गीगा टन और इसका प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष उत्सर्जन 2.60 टन था, परंतु भारत का ऐतिहासिक संचयी 1870 से 2017 उत्सर्जन बहुत कम है, जो कि अमेरिका में 25%, यूरोपियन संघ में 22% और चीन में 13% की तुलना में 3% है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचांक 2021 के अनुसार 2019 में वैश्विक जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी दुष्प्रभाव से सर्वाधिक पीड़ित देशों में भारत 7वें स्थान पर था। भारत ने देश के रूपांतरण में शहरों की भूमि की पहचान की है। सतत विकास लक्ष्य विशेष रूप से लक्ष्य संख्या 11 शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, उन्नतशील और टिकाऊ बनाना, और लक्ष्य संख्या 13 यानी जलवायु परिवर्तन उनके दुष्प्रभाव को निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना को क्रियान्वयन करने के प्रति अपनी वचनबद्धता के अनुरूप भारत ने शहरीकरण की प्रक्रिया मजबूत बनाने के उपाय पहले से शुरू कर दिए हैं, ताकि शहरों को अधिक सक्षम एवं समावेशी एवं कार्बन में कमी के साथ टिकाऊ बनाया जा सके। भारत में जलवायु संबंधी कुछ महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं, जिनमें जलवायु परिवर्तन के बारे में 2008 की राष्ट्रीय कार्य संख्या यानी NAPCC अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की ऐतिहासिक शुरुआत और राष्ट्रीय स्तर पर लक्षित महत्वाकांक्षी एवं प्रतिबद्ध योगदान INDC कार्य योजना प्रस्तुत करना शामिल है इसमें। आपको एक चीज और बता देना चाहते हैं कि ये सभी उपाय स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की भारत की नीतियों और उनके कार्यक्रमों को इर्द गिर्द केंद्रित करती है।

0: इनमें से समुन्नत शहरी केंद्र कचरे से संपदा को बढ़ाना देना, सुरक्षित एवं स्मार्ट और टिकाऊ हरित परिवहन नेटवर्क की स्थापना करना, प्रदूषण में कमी और वन एवं वृक्षों का अक्षादान के माध्यम से कार्बन सिंक बढ़ाने की भारत के प्रयास शामिल हैं। तो बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं मित्रों, आपको हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जरूर बताएंगे, छोटे छोटे बिंदियों पर प्रकाश डालेंगे, चूंकि हम बातचीत भी करते चले जाएंगे और हम गीत संगीत भी सुनते चले जाएंगे। एक महत्वपूर्ण गीत को हम सुन लेते हैं, पर्यावरण सुड़ा। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो बुंदेलखंड 90.4, अपना रेडियो अपनी बात है।
1: पर्यावरण बचा लू भैया मान लो कही,

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम शुभ कल में। साथियों, हम उन आंकड़ों पर बातचीत कर रहे हैं और साथ साथ में कार्बन मुक्त दुनिया के लिए शहरी पहल में तेजी लाना, इस पर भी हम बात कर रहे हैं। आपको एक और जानकारी देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि जो हम और आप देख रहे हैं कि कारों से निकलने वाला धुआं, ख़ास तौर पर जो हमारी मीलें लगी हुई हैं या फैक्ट्रियाँ लगी हैं, उनसे निकलने वाला धुआं जो हमारे पर्यावरण को दूषित करता है। साथ साथ में आपको एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में शहरों का लगभग 70% योगदान रहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा शहरों में कार्बन डाइऑक्साइड फैलती है, चाहे वो गाड़ियों के माध्यम से हो, चाहे फैक्ट्रियों की चिमनियों के माध्यम से हो, जिसमें परिवहन, भवन निर्माण, ऊर्जा और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे क्षेत्र

शहरी ग्रीन हाउस उत्सर्जन में बल्क योगदान के लिए जिम्मेदार हैं। आवश्यकता है कि इस बात की कि सभी संबंधित हितधारक शहरों और कस्बों में टिकाऊ एवं समावेशी बनाने के लिए मिलकर काम करें और वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन पर COP21 पेरिस समझौते जो हुआ था और सतत विकास लक्ष्यों के लिए प्रति हमें वैश्विक प्रतिबद्धता की पुष्टि करने की आवश्यकता है और विशेष रूप से लक्ष्य 11 जो है जिसमें 2030 तक समावेशी सुरक्षित समूल और टिकाऊ शहरों के निर्माण की बात की गई है जिसे हम SDG कहते हैं। जो SDG लक्ष्य 13 है उसमें जलवायु परिवर्तन और उसके दुष्प्रभाव का मुकाबला करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान भी इसमें किया गया है। इसके अलावा हैबिटेट न्यू अर्बन एजेंडा भी व्यापक रूप से एक विस्तृत बहुस्तरीय एवं क्रॉस सेक्टरल फ्रेमवर्क तैयार करता है जिसमें एक स्थानीय फोकस होता है जो वैश्विक जलवायु कार्रवाई को तेज कर सकता है और सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीय बनाने के लिए साधन प्रदान कर सकता है। इसे देखते हुए वैश्विक महामारी के संदर्भ में विश्व पर्यावरण दिवस और पृथ्वी दिवस निम्नांकित के लिए सभी हितधारकों के लिए नए अवसर प्रदान करते हैं। वैश्विक अभियान रेस टू जीरो और UN हैबिटेट और क्लाइमेट एक्शन फॉर सिटीज पर विचार विमर्श और विचार मंथन करना नवंबर 2021 के अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP26 के संदर्भ में स्थानीय सरकारों को अमल करने योग्य शून्य कार्बन योजनाएं विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना, विश्व की 7.5 अरब जनसंख्या में से आधे अधिक यानी 55% लोग अब शहरों में रहते हैं जिनकी ऊर्जा खपत में 78% और वैश्विक CO उत्सर्जन यानी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 70% से अधिक जिम्मेदार हैं। 2030 तक विश्व की लगभग 60% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में होगी और इस तीव्र शहरीकरण से विशेष रूप से ऊर्जा खपत औद्योगिक गतिविधियां और परिवहन से वांछित उत्सर्जन का बढ़ना जारी रहेगा। यह आकलन हम इसलिए बता रहे हैं कि यदि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हमेशा की तरह व्यापार का रवैया जारी रखता है तो धरती का तापमान 2050 में 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाएगा जिसमें भयावह अनुपात के बाद प्राकृतिक आपदाएं होगी। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन मानव बस्तियां विशेष रूप से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और शहरी गरीबों के लिए असुरक्षित बनाता है। इसमें चरम मौसम घटनाओं का सामना करना पड़ेगा और इसमें प्रभावित लोग भी होंगे। किफायती और उत्सर्जन में आक्रामक कमी आने की कार्यनीति के साथ कम कार्बन वाली संसाधन कुशल हरित व्यवस्था अधिक लाभ देने के वादा कर रही है। साथ साथ में शहरी पर्यावरण प्रदूषण और आपदा रोकने के लिए जलवायु परिवर्तन आकलन और अनुकूलन ढांचा विकसित करने तथा समन एवं अनुकूल कारणों के वित्त शोषण उपाय अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कुछ अन्य उपायों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है जैसे कि कम कार्बन फुटप्रिंट वाली भवन निर्माण सामग्री, रियायती क्षेत्रों और विकास केंद्रों की संतुलित आयोजनों जैसे कि उपायों के माध्यम से ऊर्जा सक्षम और जलवायु प्रकोप रोधी शहरों का निर्माण, ऊर्जा सक्षम भवन संहिता और प्रदूषण नियंत्रण अपवृष्ट प्रबंधन आदि के बारे में हम जन जागरूकता कर सकते हैं और जन भागीदारी के हितधारकों के बहुउद्देशीय सहयोग हम कर सकते हैं। और भी साथियों इस कार्यक्रम शुभकाल में बातचीत होगी। हम यहाँ पर एक गीत और सुन लेते हैं पर्यावरण जुड़ा। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो बुंदेलखंड 90.4 अपना रेडियो अपनी बात है।

बहुउद्देशीय सहयोग हम कर सकते हैं। और भी साथियों, इस कार्यक्रम शुभकाल में बातचीत होगी। हम यहाँ पर एक गीत और सुन लेते हैं, पर्यावरण से जुड़ा। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो बुंदेलखंड 90.4, अपना रेडियो अपनी बात है।

0: और हम ये जानना चाहते हैं कि जो आपका आगे का क्या प्लान है इसमें, और क्या करना चाहती हैं, आपकी योजना क्या है इसमें?
1: आगे ऐसा है कि अपने धीरे धीरे करके सिलाई सेंटर के बाद फिर आगे अपने घर में भी कुछ कपड़ा लाओ, अपने घर में भी करें, ताकि गांव वालों को भी आए तो अपने 2 पैसे गांव के भी बचे और 2 पैसे अपने सिलाई सेंटर से भी बचे, तब परिवार का गुजारा हो सकता है।
0: जी जी बिल्कुल रूपा जी, आपने जो बातें बताई हैं बहुत ही अच्छी लगी। इसमें हम एक चीज और थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपने ये कर रही थी, सिलाई का काम आपने शुरू किया, तो क्या क्या परेशानी आपको आई? क्योंकि देखो कोई भी काम करते हैं तो परेशानी तो आती है।
1: परेशानी तो आती है वर्षा दीदी।
0: जी, तो आपको ऐसी कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा?
1: हमें ऐसे जैसे हमें आता नहीं है तो कोई काम करना नहीं आता, जैसे शुरू शुरू में हमने सिलाई सेंटर में हमने पूछा कि कपड़ा कितना नाप का होता है, तो हमने पूछा सब मिलके के, हमने सर से पूछा या मैडम से पूछा जो हमें सिखाती हैं,
0: जी
1: उनसे उनसे पूछा हमने ये कपड़ा कितने मीटर का होता है। इसके बाद में तब हम आगे बढ़ते गए, धीरे धीरे हमें नॉलेज हुआ कि हम इन कपड़ों को ध्यान में रखें, कल
0: जी
1: कल जाके हम बाजार में ले तो सकें, अपन को लेना है तो कल बाजार में ले तो सकें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, जब तक अपन को पूरी जानकारी खुद ना हो उस चीज के बारे में, तो हम बाजार में जाके नहीं ले सकते।
1: नहीं ले सकते ना, फिर धीरे धीरे करके बस हमें अपने जैसे मशीन ली तो मशीन को भी ध्यान में रखना, ताकि कल बाजार खराब हो जाए कोई भी चीज तो बाजार में जाके हमें लेने पड़ जाए, या हम ना जाए दूसरों को बता तो सके उसके नाम वगैरह सब,
0: जी
1: तो बहुत सी परेशानी हुई ऐसे, हमें जानने में बहुत भी कठिनाई आई। हमने आगे चल के दूसरों आदमी से पूछा हमने
0: जी
1: कि ये चीज क्या है, तो
0: जी
1: हमें जानकारी हुई।
0: जी रूपा जी, तो जब आपने सिलाई 1 महीने सीखी है, तो आप 1 महीने में क्या परफेक्ट टेलर जिसको कहते हैं, आप सिलाई करने लगी थी क्या, या फिर
1: नहीं
0: इससे
1: एक
0: ज्यादा
1: महीने में
0: समय
1: तो नहीं
0: लगा?
1: किया अभी, नहीं, 1 महीने में नहीं हमने किया,
0: जी
1: अभी चल रही, शुरू चल रही, अभी सीख रहे हैं अभी। अब कितने फिलहाल हमने 1 महीना कौन था, 2-3 महीने हो गए, 3 महीने गुजर गए
0: अच्छा, 3 महीने
1: अभी
0: आपके
1: सीख।
0: गुजर गए हैं, तो कुछ ना कुछ चीजें तो ऐसी होंगी ना जो आप परफेक्ट बना लेती हैं।
1: हाँ वैसे सलवार है, कुर्ती
0: जी
1: है, ब्लाउज है,
0: ये
1: बस
0: चीजें
1: यही दो
0: आप बना
1: चीज,
0: लेती हैं।
1: हाँ यही 2-3 चीजें बना लेते हैं,
0: अच्छा, इसमें आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है?
1: अब नहीं पड़ती, बस पहले पड़ती थी अब नहीं पड़ती किसी की हेल्प की।
0: अच्छा, तो गांव में जब आपने सिलाई सेंटर खोला है, मतलब खुला हुआ है, आपके गांव में इस चीज की मांग है ज्यादा से ज्यादा कि लोग आएं और आपके पास कपड़ा सिलवाएं, या फिर सिर्फ आप बाहर का ही माल लेकर सिलती हैं?
1: नहीं अभी तो वैसे बाहर का माल है, पर गांव में घर घर टेलर है तो
0: अच्छा
1: अभी तो कोई नहीं आता, अब आगे चल के जो आएगा देखा जाएगा, ना आएगा तो सब घर में घर हो गए टेलर, घर घर अपना काम कर रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं आगे चल के हम अगर सीख जाए तो फिर हम कहीं शहर में जाके दुकान लगा सकते हैं, मशीन रख सकते हैं, ताकि हमें आगे बढ़े।
0: जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी प्लानिंग है आपकी रूपा जी। इससे हमारी और जो महिलाएं सुन रही हो उनको भी लगेगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं। जैसा कि आप पहले जब सिर्फ घर का ही काम करती थी, आप कैसे, आपके मन में ये दिमाग में आइडिया आया कि हम सिलाई करेंगे, आपको पहले से इच्छा थी क्या?
1: हाँ पहले से थी, हम पहले से सोच रहे थे, पहले से हमने मशीन भी रख ली थी तो हमारे पास कपड़ा नहीं आता था, तो हम अपने घर के पुराने कपड़े काट कूट के अपने सिलते रहते थे, तो ऐसे धीरे धीरे करके आगे बढ़े। लेकिन बरसती जी एक बात और बता, कि हर गांव में ऐसा क्यों होता है कि आदमी आगे ना बढ़ पाए, अगर घर ही में है ना इंसान तो घर ही का घर ही में नहीं आगे बढ़ने देता, ये सबको भी आप बता दो, आप हमारी बात जैसे रेडियो पर चल रही तो सुन भी रहे होंगे
0: जी
1: तो, लेकिन क्यों घर घर में ऐसा होता है, इसका निश्चय आपको करना पड़ेगा वर्षा दीदी, इसको आगे बढ़ाओ कि घर घर में क्यों बुराई, और सब अच्छे
0: जी
1: जो है एक घर में सब सारे मिलके चले,
0: जी बिल्कुल, आपके
1: एक
0: कहने
1: वैसा
0: का मतलब है
1: सुनने
0: कि महिलाएं, बहुत सी ऐसी हमारी जो बहनें हैं इस समय रेडियो सुन रही हैं, उनको ये लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हालांकि उनको आता सब है लेकिन वो करना नहीं चाहती, या तो फिर उन्हें परिवार का सपोर्ट नहीं मिल पाता है।
1: नहीं, बस यही बात है, परिवार का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाती है।
0: जी, तो आपके हिसाब से जब आपने सपोर्ट की बात की है परिवार की, तो आपको कितना सपोर्ट मिला आपके परिवार से?
1: हमें तो फिलहाल अभी कुछ भी नहीं मिला, हम तो परेशान है, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि आगे चल के हम समझा रहे हैं आगे हमें बढ़ाओ, ताकि हम 2 पैसे कमा सके, हम कहीं कहाँ जाएं, बच्चे पढ़ाई में कहाँ जाएं।

0: छोड़ के
1: जी जी
0: बताओ।
1: बिल्कुल, गांव छोड़ने की बात तो आपकी बहुत अच्छी लगी कि गांव छोड़ के कहीं नहीं जाना है हमें, अपने ही गांव में अगर हमें कुछ काम ऐसा मिलता है जैसे कि आप सिलाई सेंटर करती हैं, ऐसे और भी कई कार्य हैं जो आप अपने गांव में रहकर ही कर सकती हैं, और ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत अपने परिवार का इसमें सहयोग कर सकती हैं।
0: सकते हैं, लेकिन परिवार आजकल साथ ही नहीं दे रहा, तो बताओ ऐसे पता नहीं इंसान कैसे कैसे हो जाते हैं, साथ ही नहीं दे रहा है, तो सोच रही आगे ना बढ़ जाए।
1: जी रूपा जी, आपकी जो बातें आप हमें बताई हैं, हमारी साथियों को बताई हैं, बहुत अच्छी लगी हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी बातें सुनकर हमारी जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, और वो कुछ करना चाहती हैं तो वो हमें जरूर बताएं हमारे नंबर पे, और अपनी आवाज हमें हम तक पहुंचाएं, ताकि हम भी दूसरों तक पहुंचाएं उनकी आवाज के। देखिए ऐसी भी महिलाएं होती हैं जो अपने लक्ष्य के लिए कुछ भी कर सकती हैं।
0: कर सकते हैं, इसलिए सोच रहे हैं, लेकिन गलत सोच है बरसा बहन, गलत सोच है कि ताकि आगे सोचते कि ये बढ़ ना जाए आगे, यही की यही रह जाए, सोच
1: जी
0: गलत है, आगे बढ़ने की कोशिश करते पर बढ़ने को आगे नहीं देते ना।
1: देखिए रूपा जी, एक कहावत आपने सुनी होगी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए कोशिश करते रहना चाहिए। अपने मन को कभी कमजोर मत समझिए, खुद को किसी से कम मत समझिए, आप सब कुछ कर सकती हैं, बशर्ते हिम्मत मत हारिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। जी रूपा जी, चलते चलते एक लास्ट सवाल है आपसे, जाते जाते हमारी जो बहनें हैं इस समय आपको सुन रही हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं?
0: के लिए बस यही कोशिश करते रहे, हार ना माने, बस आपने जो कहा बस हिम्मत बढ़ाते रहे, पीछे ना हटे, लड़का लड़की कहते हैं लड़का लड़की एक समान
1: जी
0: बराबर है, लेकिन हम भी वो भेदभाव नहीं करते कि लड़का लड़की एक समान नहीं है,
1: जी बिल्कुल
0: बस
1: रूपा
0: ऐसे
1: जी,
0: आगे बढ़ते रहे बहन भाई, सब मिलके चलते रहे, और घर का और बाहर का भी जो अपने करने में मदद दे सके कोई तो उनसे और संपर्क करें, हम भी आपको बता देंगे, ठीक है।
1: जी बिल्कुल रूपा जी, आपने हमें इतनी अच्छी बातें बताई, इतना समय हमें दिया, हमारे साथियों के लिए इतना वक्त निकाला कि आप किस तरह से काम कर रही हैं, सिलाई सेंटर आपका कहाँ है, और बहुत ही खास बात जो हमारे आज के कार्यक्रम में है कि आप इतनी दूर की होने के बावजूद भी आपको लगा कि हम रेडियो बुंदेलखंड में अपनी आवाज को दें, ताकि महिलाएं जो सुन रही हैं उनको थोड़ा सा उत्साह प्रेरित हो। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर सरन।
1: नमस्कार।
2: काय बार सा, तुम तो इतनी नौनी अच्छी बातें कर लेती हैं, और रूपा जी ने कितने अच्छे अनुभव आपको बता दिया। आपको तो शायद हमें देखा पहले से बिल्कुल पता हो ये कि रूपा जी बात करें और
1: हाँ
2: व्यवसाय के बारे में बताएं।
1: हाँ बस तो
2: भाई हम सोच
1: मतलब
2: ही रहते हम हमें आज कौन सा व्यवसाय दें, कौन सा व्यवसाय दें, और हमारी रूपा बहन ने बताई रही कि हमने जो हम अनुभव जो राय है उनके कैसे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि कछु भी चीज को यदि अपन व्यवसाय को स्टार्ट कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो उसके लाने ट्रेनिंग्स की जरूरत पड़ती है, उसके नाना मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है। ये सारी बातें जो रूपा जी ने अनुभव अपने बताए हैं कि उनने कैसे कैसे एक एक सीढ़ी खो रख के आज आगे बढ़ गई हैं, और उनने किस तरीके से सिलाई को काम सीख के आज भी अपनों परिवार को भरण पोषण कर रहे हैं। वाह धन्यवाद।
1: अरे मनीष भज्जा, सबसे बड़ी बात पता का हैगी, जा हैगी कि अपन हो रहे सीख तो ले थेंगे, मतलब जैसे कहता हूँ सुनी कि अरे वो ते जो चीज से करे हमें तो सीख भी जाना, सीख भी बहुत है ना, नई शुरुआत में तना एक जाबे को चस्का लगो रहा थे को, सो चले तो जा सीख भी, लेकिन वो काम को कैसे हम अपनो व्यवसाय बना सकत, कैसे उसे अपनी आजीविका चला सकते, जो बहुत कम लोग होते जो सीख पाते।
2: बिल्कुल
1: तो काय की रूपा जी ने जो हमें बताई थी कि टीकमगढ़ में जो RCET सेंटर चला थे वो उनके माध्यम से कम होते ज्यादा नहीं तो 30-40 औरतें उस समय पे ट्रेनिंग उनके संगे ले रही थी, लेकिन अगर बात करें कि उनको कंटिन्यू आगे कीने करो तो उनमें से बहुत से बहुत 10-15 महिलाएं ऐसी हैं थी जो कि अपने घरे जब वापस गई और भी सिलाई को काम कर लगी हैंगी। तो कैबी को मतलब जो है वो कि कोनो भी काम अगर अपन सीखत हैंगे और करवे के उद्देश्य से अगर सीखत हैंगे तो उनको जरूर सीखो, क्या आपने वो 1 महीना या 4 दिना जो भी आपको समय हतो वो समय आपने वो ट्रेनिंग में दो है और वो समय आपको बहुत कीमती हतो, महत्वपूर्ण हतो। तो इसे भैया अपन अपनी आजीविका के बारे में तो सोचते ही हैंगे, वो सोचवे के संगे अपन कैसे एक छोटो सो काम करके एक बड़ो सो मुनाफा कमा सकत हैंगे। इतने अगर अपन बात

0: मनीष भैया कि अपनी जो बहनें होती खास तौर से भी दो चीजन को ज्यादा पसंद करती हैं, ये दो या तीन चीजन को बहुत से बहुत। एक तो हो जाते हैं वो कि सिलाई को काम, दूसरो ब्यूटी पार्लर, तीसरों उन्हें कढ़ाई बुनाई को काम अगर अच्छा लगा थे वो तो वो भी वे करती हैंगी। तो महिलाएं अक्सर इन दो चीजन पे या तीन चीजन पे काया अटकती। हम तो कहते आप और भी बेहतरीन काम कर सकती, जैसे अचार बरी को काम है, अगर आप बहुत अच्छी तरीका से अचार बरी पापड़ है और या फिर जी मसाले होते ही अगर आपको जो ही बनावो आते हो और बहुत अच्छी तरीका से आप बनावो जानती हैं, तो उनके छोटे छोटे पैकेट बना के आप मार्केट में एक अपनी खुद की ब्रांड आप तैयार कर सकती हैं, ये अगर आपको अच्छी तरीका से बनावो आते हैं। तो केवल दो ही चीजन पे ना अटको कि हम केवल सिलाई या ब्यूटी पार्लर करेंगे, आप और भी ज्यादा काम कर सकती हैं और कई प्रकार के काम आप कर सकती हैं।
1: अरे ज्ञान की देवी, अब तो
0: हाँ
1: नक रुक जाओ और हमारे साथ ही अनखो तनक सांस लेन दो और जो लोक गीत सुनन दो अनखो। कैसे इतनी ज्ञान ज्ञान ज्ञान दे चली जाओगी, तो हमारे साथ ही कह के हाओ ज्ञानी बाबा लोग आ गए हैंगे
0: हाँ
1: और
0: मतलब
1: ज्ञान
0: तुम
1: ले
0: तो
1: गए।
0: मैं बोलन दो सो कछु नहीं है,
1: नहीं नहीं
0: तुम
1: नहीं
0: बोला
1: अपन
0: तराओ।
1: एक बढ़िया अपन भी थोड़ा विराम ले लेतेंगे और अपन सुनवाते हैं अपने श्रोता साथियन को जो नौ नौ सौ गजल खो, अपन गजल खो सुनेंगे और गजल के बाद साथियों फिर ये तनक आपकी हमारी मुलाकात जा कार्यक्रम, हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में।

0: हमारे सब श्रोता साथी अब हरीश दर्द जी की आवाज में बढ़िया सी गजल को सुन रहे थे और अब हमें लगा थे गो मनीष भैया जो ज्ञान तो तुम्हें दे सका थोगे कहे गया हम बोला सो फिर कहते कि ज्ञान दे रही
1: नहीं, अब हम भी ज्ञान नहीं देंगे,
0: नहीं
1: साथी अनखों बस पूछ वो चाह रहेंगे कि जो कार्यक्रम हम लोग बना के आप लोगों तक पहुंचा रहेंगे तो कार्यक्रम आपको कैसे लग रहेंगे, कैसे जब तक आप लोगों की प्रतिक्रिया नहीं आए, कैसे एक जो मंच है वो रेडियो बुंदेलखंड के ऐसा मंच है वो जहाँ पर हमारे श्रोता साथी अपनी बात को रख सकत हैंगे और अपनी बात दूसरे तक पहुंचा भी सकत हैंगे। तो अपन ये चीजें आपको बताते हैंगे, जो बातें आपको बताते हैंगे, चाहे वो खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हो, चाहे युवा साथियों को कैरियर से जुड़ी बातचीत हो, चाहे वो आजीविका से जुड़ी बातचीत हो, तो ये सारी चीजें जो रहेंगी, सारी बातें जो रहेंगी, उनको यदि हमारे श्रोता साथी यदि मैसेज भी करें या फिर व्हाट्सअप करें या फिर फेसबुक पे भी हम और हैंगे और फेसबुक पे भी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर लिख सकते हैंगे जो कार्यक्रम हम चला रहे हैं उनके बारे में। और खास तौर पर आज को जो कार्यक्रम हमने जय के लाने बना है गो, जैसे रूपा जी ने अनुभव दिए हैंगे, तो आप भी अपने अनुभव साझा कर सकते हैंगे। यदि आप सफल व्यवसायी हैंगे, आपको लग रहा है गो कि आपको ट्रेनिंग की जरूरत है या फिर आपको लग रहा है गो कि आपको मार्गदर्शन की जरूरत है, तो आप हमें कॉल करके बता सकते हैं।
0: बिल्कुल एक प्रकार है और हम वही सोच रहे थे कि ज्ञान की बात खुद कर रहे थे और देखो इतनो मना करत करत आखिर में ज्ञान दे ही दो। तो साथियों सीधी सी बात नहीं कर सकते कि भज्जा अब हम जाते हैं ये कार्यक्रम से और आपको अगर कोई संपर्क करने हैं तो उनके लाने हमारा नंबर जो है वो
1: हाँ, और साथ ही जरूर फोन लगाएं या फिर फेसबुक पे फॉलो करें या फिर हम इंस्टाग्राम पे फॉलो करें।
0: अरे मनीष भैया सुनो सुनो सुनो सुनो तुमने ऐप के बारे में कहीं नहीं बताओ और
1: ऐप हमारे श्रोता साथियों के पास
0: जानत है।
1: नहीं नहीं जानत तो हैंगे और हम एक बार फिर से कह वो चाहते हैंगे कि रेडियो बुंदेलखंड आप इंटरनेट पे भी उपलब्ध है वो, जहाँ पर रेडियो नहीं पहुंच पा रहा है वो रेडियो

0: सेट के माध्यम से वहां पे इंटरनेट की इस दुनिया में आप सभी का स्वागत है। रेडियो बुंदेलखंड वहां भी उपलब्ध है गो, और आप सिर्फ गूगल प्ले स्टोर पे जाने हैं गो, और प्ले स्टोर पर रेडियो बुंदेलखंड जैसे ही आप सर्च करोगे तो आप रेडियो बुंदेलखंड का लोगो उपलब्ध पाओगे। बाखो डाउनलोड करो और चाँद जितने बैठ के हैं, यदि आपके पास इंटरनेट है वो चाँद उन छिड़िया बैठ के सुन सकत हैंगे और अपनी ज्ञान की बात अनखो सुन सकत हैंगे।
1: तो केवल साथियों ज्ञान की बातें सुनबे नहीं, मनोरंजन की बातें भी सुनबे के लाने। आप डाउनलोड जरूर करबे ऐप, काहे कि अपने श्रोता साथियन की हर बार जई शिकायत रहती कि रेडियो के नेटवर्क नहीं आ रहे, तो एक बहुत अच्छा माध्यम है कि आप जो है अपने फोन में प्ले स्टोर पे जाके ऐप को डाउनलोड कर लेवे, रेडियो बुंदेलखंड को ऐप, और फिर अपन जिते चाहे बैठ के ई कार्यक्रम को सुन सका थे सुबेरे 7 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। तो अब भैया देखो ज्यादा ही टाइम हो रहा हो काहे कि अब हमें चलन दो, और फिर ये आपसे मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक के लाने नमस्कार।
0: नमस्कार।

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का आपके अपने रेडियो दोस्त मनीष कार्यक्रम हमाई गांव हमाई सरकार कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि हमाई गांव हमाई सरकार कार्यक्रम में हम पंचायत पर बातचीत करते हैं, उन ग्रामों पर बातचीत करते हैं, ग्राम के विभिन्न ढांचा जो हम जिसे पंचायत कहा जाता है उन पर बातचीत करते हैं। ग्राम सभा हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है और ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का क्या महत्व है, इसके बारे में भी बताया गया था। आपको बता दें कि हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से बताया था कि छोटे छोटे बिंदुओं पर हम प्रकाश डालेंगे। अभी तक लोगों को दोस्तों पता नहीं है कि आखिरकार पंचायती राज व्यवस्था क्या है, कब शुरुआत इसकी हुई है, हमारा पंचायत में कितना योगदान है, ये अभी तक किसी ने नहीं समझा है। और लोग बस हवा हवा में बात करते रहते हैं कि हमारी पंचायत है, सरपंच हमारा है, काम नहीं कर रहा है। अरे भाई, उस बातचीत को आप समझिएगा, तब आप कहिएगा कि ये पंचायत राज व्यवस्था है, इसमें ये हमारा अधिकार है, ये नियम कानून है, इस बात को गौर करिएगा। अभी तक तो हवा हवा में बात होती है कि साहब मध्याह्न भोजन नहीं बट रहा है, भाई साहब हमारे गांव में नाली की समस्या है, आप उस पर प्रकाश तो डालिएगा। आपको यही पता नहीं है कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम हमारी गांव हमारी सरकार कार्यक्रम में इसी बिंदु पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे मन में खटक रहा था कहीं ना कहीं कि अभी तक लोगों को अपनी जिम्मेदारी का अधिकार के बारे में पता नहीं है, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पता नहीं है, सिस्टम क्या होता है ये भी पता नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम तालुका और जिला आते हैं। भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था का अस्तित्व में रही है। आधुनिक भारत में पहली बार तत्कालीन जब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सुखड़िया और मुख्य सचिव भगत सिंह मेहता थे। भगत सिंह मेहता को राजस्थान में व बलवंत राय मेहता को भारत में पंचायती राज का जनक भी माना जाता है। दोस्तों, इस पर हम बातचीत जरूर करेंगे, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था एक बड़ा बिंदु है, बड़ी समस्या है, लोगों को यही पता नहीं कि पंचायती राज व्यवस्था। आइए हम हमारे एक्सपर्ट चंदन जी से आज हम जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है, कौन सा अधिनियम है, इसमें हमारा क्या अधिकार है। तो आइए हम पंचायती राज व्यवस्था पर चंदन जी से बातचीत करते हैं कि आखिरकार पंचायती राज व्यवस्था क्या है, लेकिन विराम के बाद।

0: हम सब को ऐसा अभियान चलाना है।
1: आवो बहनों हम सब को ऐसा अभियान चलाना है।
0: आवो बहनों हम सब को ऐसा अभियान चलाना है।
1: सेवा भावी निस्वार्थ जुन
0: सेवा भावी निस्वार्थ जुन
1: सरपंच

समझाना है, आओ मिलो हम सबको ऐसा अभियान चलाना है, आओ बहनों हम सबको

0: आरक्षण वो हमको अपनाना है।
1: पंचायत से संसद तक,
0: पंचायत से संसद तक
1: बहनों को पहुंचाना है। आओ बहनों हम सबको ऐसा अभियान चलाना है। आओ बहनों हम सबको ऐसा अभियान चलाना है।

0: हूँ सरपंच, तुमको साथ निभाना है।
1: मैं बन सकती हूँ सरपंच, तुम सबको साथ निभाना है।
0: मैं बन सकती हूँ सरपंच, तुम सबको साथ निभाना है।
1: मैं बन सकती हूँ सरपंच, तुम सबको साथ निभाना है।
0: घर से पंचायत तक, घर से पंचायत तक, हम सबको मिलकर जाना

0: हम सबको ऐसा अभियान चलाना है। आओ बहनों हम सबको ऐसा अभियान चलाना।
1: गांव में काम करवावे की जिम्मेदारी कौन की?
2: पंचायत।
1: गांव में किते किते और का काम हुज्जे जो तय को करे?
3: ग्राम सभा।
1: सोशल ऑडिट की जिम्मेदारी कौन की?
2: ग्राम सभा की।
1: मैं हूँ जा गांव की सरपंच, रोजगार गारंटी से जुड़ी पंचायत और ग्राम सभा की जिम्मेदारी को मैंने समझो है और आपने।
4: रेडियो बुंदेलखंड द्वारा जनहित में जारी।
5: चंदन जी, हमारे साथियों को बताइएगा कि चूंकि बातचीत हम कर रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था पर, तो पंचायती राज व्यवस्था आखिरकार क्या है, इसके बारे में जानकारी दीजिएगा।
6: तो हमारा जो पंचायत राज अधिनियम है, पंचायत राज अधिनियम में लोगों को ये अधिकार दिए गए हैं, खास करके जब 73वां संविधान संशोधन हुआ पंचायती राज में, तो उसके बाद ये लोगों को अधिकार दिए गए जो वो अपने गाँव की योजना पंचायत के साथ मिलकर खुद तैयार करें, अपनी आवश्यकताओं को खुद समझें, अपनी आवश्यकताओं के आधार पर उसके समाधान की रणनीति तैयार करें। ये तो एक कानूनी पक्ष है जो हमें पंचायत के कानून के द्वारा प्रदान किए गए पंचायतों को, ग्राम सभा के लोगों को। लेकिन पहले ये समझना पड़ेगा जो सूक्ष्म स्तरीय नियोजन की या विकेंद्रीकृत नियोजन की बात हम तब करें, पहले ये समझ लें जो नियोजन क्या है, पहले नियोजन कहते किसको है। नियोजन आमतौर पर किसी भी काम को करने से पहले जब पूरी तरह उसके बारे में सोच विचार लिया जाता है, सलाह मशविरा करके जब जो निर्णय लिया जाता है और उस काम को करने की रणनीति या तरीके सोचे जाते हैं, उसे ही नियोजन कहते हैं।
5: क्योंकि आपने बहुत अच्छी बातचीत बताई है, मन में एक हमारे

0: सवाल चल रहा है कि ये नियोजन की प्रक्रिया है वो क्या है, इसको विस्तार से हमारे साथियों को बताइएगा।
1: नियोजन या योजना बनाने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति, जो हमारा ग्राम सभा का समुदाय है या ग्राम सभा के जो लोग हैं या पंचायत के जो लोग हैं जिनको हमने चुना है, वो पहले खूब सोच विचार करे, काम करने के नए नए तरीकों पर विचार करे, उसकी अच्छाइयां बुराइयों को सोचे और तब जाकर समाधान करने के निर्णय पर पहुंचे जिससे उसका सही क्रियान्वयन हो सके। और अगर आप उसको समझें तो ऐसे कह सकते हैं, जब हम वार्ड ग्राम पंचायत के स्तर पर जब छोटी छोटी योजना बनाते हैं उसे ही सूक्ष्म स्तरीय नियोजन कहते हैं। मतलब बहुत स्पष्ट है, सूक्ष्म मतलब छोटा और नियोजन मतलब योजना तैयार करना। जब हम छोटी योजनाओं को तैयार करते हैं छोटे छोटे स्तर पे तो उसे सूक्ष्म स्तरीय नियोजन कहा जाता है। इसमें एक बहुत आवश्यक चीज ये है, जो हम योजना को तैयार करने से पहले हम देखते हैं जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन क्या है और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर जो हमारे स्थानीय लोग हैं, जो गांव ग्राम सभा के लोग हैं, उनके साथ हम उनकी सहभागिता से चर्चा करते हैं। चर्चा के बाद उस परिस्थिति का विश्लेषण करते हैं योजना के निर्माण के लिए और क्रियान्वयन, मतलब उस योजना तैयार होना ही बड़ी बात नहीं है, विकेंद्रीकृत नियोजन में या गांव पंचायत के स्तर पर जो छोटी योजनाओं तैयार करते हैं इसमें हम जरूरी पक्ष ये हो जाता है जो योजना तैयार करने के बाद उस पे कैसे काम किया जाए, कि देखरेख कैसे की जाए, उसमें जिम्मेवारी कैसे तय की जाए, ये एक बड़ा जरूरी चीज है। ये जो नियोजन की प्रक्रिया है ये सामूहिक तौर पे जो पंचायत के लोग हैं या ग्राम सभा के लोग हैं इस तरीके का विश्लेषण से उसमें निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ती है। वो बैठ के लोगों के साथ बातचीत करते हैं, किस आधार पे कहाँ पहुंचना है ये निर्णय तय करते हैं, तो एक तरह से ये उनकी क्षमता भी बढ़ाती है गाँव के लोगों के साथ, जो वो अपने स्थानीय परिस्थिति या स्थानीय स्थितियों को सोचने के लिए थोड़ा समझें चीजों को। जो हमारी एक मजबूत इकाई है, जो एक ताकतवर इकाई है गांव के संदर्भ में देखें या ग्रामीण संदर्भ में देखें, और पंचायत एक ऐसी इकाई है जिसको एक कानूनी अधिकार प्राप्त है। अगर आप देश के स्तर पे देखते हैं तो हमारे पास संसद है, राज्य के स्तर पे देखते हैं तो हमारे पास विधानसभा है, अगर आप गाँव के स्तर पे देखते हैं तो हमारे पास पंचायतें हैं। इसे कानूनी अधिकार प्राप्त है जो ये एक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। इस परिस्थिति में खास करके एक संस्था के संदर्भ में देखें तो पंचायत जो है वो विकास के लिए योजना बनाता है, लेकिन विकास की योजनाएं ऐसी होती है जो आपकी सामाजिक न्याय एवं समानता पर आधारित हो, मतलब सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करते हुए पंचायत को विकास की योजना बनानी पड़ती है। इसमें गाँव के स्तर पे जो समस्याएं हैं, जैसे आप बोल रहे थे जो नाली की समस्या है, स्कूल की समस्या है, लोग मानते हैं, लोगों का ये सोचना है जो समस्याएं हमारे पास जो है उसके समाधान करना जो है वो सरकार का काम है, जबकि पंचायती राज व्यवस्था कानून ये कहता है जो गांव के स्तर पर जो पंचायतें हैं या पंचायतें हैं वो स्थानीय सरकार के रूप में काम करती है, वो एक वहां की लोकल सरकार है, वो तो लोकल सरकार है। और इसके लिए पंचायतों को तीन चीजें दी गई हैं जो बराबर एक विषय बनता रहता है। अगर आप देखें तो हमारे पास पंचायत में काम करने वाले लोग हैं, उनके कानूनी रूप से उनके काम तय किए गए हैं, जो पंचायतों क्या करने हैं, उन काम को करने के लिए उनको लोग दिए गए हैं और लोग के साथ उनको पैसे भी दिए गए हैं जो काम करे। आमतौर पे किसी भी काम को करने के लिए तीन चीजें जरूरत है, आपके पास अधिकार होने चाहिए, आपके पास लोग होने चाहिए और आपके पास पैसे होने चाहिए। ये तो ये तीनों चीजें अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, जो पैसे की बात है अलग अलग योजनाओं से माध्यम से पंचायतों को दिए गए हैं। कुछ ऐसे पैसे दिए जाते हैं जो पंचायतें अपना स्वतंत्र निर्णय ले गांव के लोगों के साथ बैठ के, तो इस थोड़ा सा मानसिकता को बदलने की जरूरत है। जो स्थानीय सरकार है, जो पंचायतें हैं, स्थानीय समस्याओं के निराकरण वहां के लोगों के साथ मिलकर वो करे। ये पंचायत, ये जो समस्याएं हो सकती है वो किसी विभाग के कर्मचारी से उसका मार्गदर्शन लिया जा सकता है और पंचायतें अलग अलग मुद्दे पे योजना बना के अलग अलग विभागों को भेज सकती है। उदाहरण के लिए आपने कहा था जो विद्यालय की समस्या है, तो विद्यालय की समस्या है तो इससे संबंधित योजना बना के शिक्षा विभाग को भेजा जा सकता है जिले के स्तर पे। पीने की पानी की समस्या है, इसको लेके हमारे जो योजना बना सकती है पंचायत, योजना बना के आपको पीएचईडी विभाग को भेज सकती है। आपके पास शौचालय की समस्या है, शौचालय की समस्या को लेकर सरकार ने इतना बड़ा समग्र स्वच्छता अभियान चला रखा है, उसको लेके बात की जा सकती है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी, आपने बहुत अच्छी हमारी जानकारी पंचायती राज व्यवस्था को और एक एक बिंदु पर प्रकाश डाला जो हमारे साथियों को बड़ी महत्वपूर्ण लगी होगी। और सोचने वाली बात यह है कि अब जाके अब पता चला कि पंचायती राज व्यवस्था में कहां पर समस्या है, कहां पर लोग अपना निर्णय लेने में हिचकिचाते हैं। चंदन जी आपसे फिर मुलाकात होगी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बातचीत हमारे श्रोता

0: आपको दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: गांव में काम करवावे की जिम्मेदारी कौन की?
2: पंचायत की।
1: गांव में किते किते और का काम हुजे जो तय को करे?
3: ग्राम सभा।
1: सोशल ऑडिट की जिम्मेदारी कौन की?
2: ग्राम सभा की।
1: मैं हूँ जा गांव की सरपंच, रोजगार गारंटी से जुड़ी पंचायत और ग्राम सभा की जिम्मेदारी को मैंने समझो है और आपने।
4: रेडियो बुंदेलखंड द्वारा जनहित में जारी।
0: एक बार फिर से पुनः दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी गांव हमारी सरकार। आप तो दोस्तों समझ गए होंगे, आप एहसास हुआ होगा, अभी तक साथियों को ये पता नहीं, उनने सोचा कि ग्राम सभा में प्रस्ताव डाला और बस काम हो गया है। ये साथियों अब हमें जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि बस एक ही जिम्मेदारी समझते हैं कि बस हम वोट डाल दिया, हमने सरपंच गठन कर दिया, अब सरपंच ही सारा काम करेगा। नहीं दोस्तों, अब हमें जागरूक होना होगा, तभी हमारे गांव का विकास होगा, क्योंकि समितियां इसलिए बनाई जाती हैं, निगरानी समिति हो, हर किसी कार्य योजना कब तैयार की जाती है, ग्राम सभा में जब कार्य योजना तैयार की जाती है, जैसे चंदन जी ने अभी इस कार्यक्रम के माध्यम से बताया कि कार्य योजना तैयार करना एक बात नहीं है, उसकी जिम्मेदारी लेना ये बहुत बड़ी बात रहती है। क्योंकि हम सोचते हैं कि कार्य योजना अब तैयार हो गई है, हमने नाली का प्रस्ताव दे दिया है, अब बन जाएगी, अब उसमें ये देखना है हमारे पंचायत में कितना पैसा है, पंचायत में कैसे कौन क्रियान्वयन करेगा, कैसे रहेगा, कौन निगरानी इसकी करेगा, ये सारी चीजें, ये जिम्मेदारी हमें स्वयं लेनी चाहिए, तभी हमारे गांव का विकास होगा। एक आदर्श गांव आप दोस्तों किसे समझते हैं? एक आदर्श गांव वही गांव होता है जहां पर हम खुद सरपंच के साथ मिलकर जिम्मेदारी खुद निभाते हैं, चाहे वो किसी भी स्तर पर जिम्मेदारी हो। आप जब बैठक होती है तब आप बताइएगा कि ये काम हम देखेंगे, आप नाली का अगर बात की जाए, नाली का काम ये हम देखेंगे, जल का काम ये समिति गठित कर दी है, ये काम देखेगा, तब काम में मजा आता है और पंचायत भी अच्छी तरीके से चलती है। अब अभी तक क्या होता है, सरपंच हमने बना दिया है, सरपंच ने प्रस्ताव डाल दिया है, वो भी गोपनीय तरीके से प्रस्ताव डाल देते हैं, जब भी ग्राम सभाएं होती ग्राम सभा प्रस्ताव डाल के बस तैयार हो जाता है। अब क्या मटेरियल लगा रहे हैं, कौन सा मटेरियल वो इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसा मटेरियल लगा रहे हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो ध्यान में रखना चाहिए, ये नहीं सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि सरपंच ने डलवा दी है। एक अच्छा नागरिक की यही पहचान दोस्तों होती है कि हमें उस चीज के प्रति जिम्मेदार लेना चाहिए, उस कार्य के प्रति जिम्मेदारी लेनी चाहिए, हमें अपने आप को स्वयं इस चीज के लिए सरपंच को कहना चाहिए कि ये हम जिम्मेदार हैं और इसका हम क्रियान्वयन करेंगे। दोस्तों हम कार्यक्रम के माध्यम से बताते चले जाते हैं कि हमें किस तरीके से काम करना है। पंचायत में आपकी भूमिका बहुत बड़ी रहती है, चाहे वो सदस्य के रूप में हो या फिर उप सरपंच के रूप में हो या सरपंच के खुद रूप में हो। अब क्या होता है कि सरपंच गठित कर देते हैं और हम बात करते हैं कि हमारे घर में शौचालय नहीं है साहब, हमारे घर में शौचालय बनाइए। आप खुद जिम्मेदारी लीजिएगा कि जब ग्राम सभा होती कितने शौचालय बन गए हमारे ग्राम में, अब कितने शेष हैं, नाली की क्या समस्या है, खंजड़ा की क्या समस्या है, ये सारी समस्याएं देखते हुए तभी हमें अपने कार्य को बढ़ाना होगा और साथ में ग्राम के विकास में अपना साथ एवं सहयोग देना होगा। साथियों बस इतना ही हमारे इस कार्यक्रम हमारे गांव हमारी सरकार में, आपकी हमारी फिर पंचायत पर बातचीत होगी अगले कार्यक्रम में। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमारा पता है, यदि चिट्ठी के माध्यम से आप बताना चाहते हैं तो पता लिख लीजिएगा, हमारा पता है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तिगला के पास ओरछा, और हमारा फोन नंबर है 9425147126। तो आपके रेडियो दोस्त मनीष लेते हैं इस कार्यक्रम हमारी गांव हमारी सरकार कार्यक्रम से जाने का। आपके हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। चलते चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा सा गीत। नमस्कार।

शेर वो पढ़ रहे हैं जो फिल्म में, जो अखबार में नहीं है।

अजमेर जाते हैं, जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं।

0: हिंदुस्तान में गंगा जमुनी तहजीब है, उसको किस अंदाज में हमारी एक कोशिश है। गंगा जमुना की लहरों में प्यार के धारे बहते हैं,
1: गंगा जमुना की लहरों में प्यार के धारे बहते हैं।
0: हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलजुल कर सब रहते हैं,
1: हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलजुल कर सब रहते हैं।
0: होली ईद दिवाली मोहर्रम मिलजुल कर सब करते हैं,
1: होली ईद दिवाली मोहर्रम मिलजुल कर सब करते हैं,
0: होली ईद दिवाली मोहर्रम मिलजुल कर सब करते हैं।
1: झंडा तिरंगा

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलिहान में। और खेत खलिहान कार्यक्रम में खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं। साथियों, काफ़ी दिनों से हम इस विषय को लेकर चर्चा भी कर रहे हैं कि हमारे किसान साथी अब आने वाले समय में अपने कृषि में बदलाव की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से खेती किसानी में बदलाव किया जाए ताकि उनकी जो उत्पादन क्षमता है वो अधिक से अधिक हो सके। क्योंकि आजकल हम ये देख रहे हैं, जब तक हम कुछ नया नहीं करते हैं तब तक हम जो हम लागत लगाते हैं और उसका खर्चा होता है वो मिला जुला रहता है। तो हमें ऐसी खेती, ऐसी पद्धति के लिए आगे बढ़ना होगा, सोचना होगा, समझना होगा ताकि हम एक नई मिसाल कायम कर सकते हैं अपनी खेती किसानी में। हमारे बहुत से युवा साथी जो खेती पर निर्भर भी रहते हैं और ख़ास तौर पर हमारे किसान साथी खेती पर निर्भर रहते हैं और वो सिर्फ ये सोचते हैं कि हम दो फसलें वो करते हैं कि जो ग्रीष्मकालीन फसल रहती है उसको भी नहीं करते हैं। सिर्फ ये दो फसल, एक तो गेहूं की फसल करते हैं, एक धान और मूंगफली की फसल करते हैं। तो काफ़ी परेशानी होती है क्योंकि दो फसलों में किस तरीके से गुजारा चला जा सके। तो आज एक नए विषय को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं और ये बड़ा समझने वाली बात होगी किस तरीके से इस पद्धति को अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में हम लोग ला सकते हैं। कई हमारे ऐसे जागरूक किसान भी हैं जो नई नई पद्धति से अपनी खेती को कर रहे हैं और उसमें बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। खासतौर पर अगर इस तरीके की हम तकनीक का इस्तेमाल करेंगे तो आने वाले समय में, आने वाला भविष्य हमारा अच्छा होगा, हमारे पैदावार भी अच्छी बढ़ेगी और हमें मुनाफा भी अच्छा होगा। तो आइए पहले सुन लेते हैं इस चर्चा को।

0: एरोपोनिक खेती एक ऐसी तकनीक है जिसमें मिट्टी के इस्तेमाल के बिना फसल को उगाया जाता है। इस तकनीक के जरिए पौधों को उगाने के लिए हवा या धुंध का इस्तेमाल किया जाता है। इस विधि में पौधों की जड़ों को हवा में लटका दिया जाता है और पोषक तत्वों के घोल को सीधे उनकी जड़ों पर छिड़का जाता है। क्योंकि इसमें मिट्टी शामिल नहीं होती, इसलिए मिट्टी जनित रोगों और कीटों का खतरा काफी कम हो जाता है। एरोपोनिक खेती ग्रीन हाउस में की जाती है, जिसमें प्रकाश, तापमान और आर्द्रता सहित बढ़ती परिस्थितियों पर सटीक नियंत्रण संभव हो पाता है। एरोपोनिक विधि से उगाए गए पौधे अक्सर मिट्टी में उगाए गए पौधों की तुलना में तेजी से बड़े होते हैं।
1: ये जो टेक्नोलॉजी है एरोपोनिक्स, ये जो नासा है, जो अमेरिका की एक संस्था है नासा, उसने इसके ऊपर कुछ साल पहले काम करवाया था अपने एस्ट्रोनॉट्स के लिए। जो एस्ट्रोनॉट्स, उनके वैज्ञानिक जो स्पेस में जाते हैं, तो उनका सोचना ये था कि स्पेस में, क्योंकि उनको ताज़ा भोजन, खासतौर पत्तेदार जो लेटस वगैरह है, वो चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो उन्होंने ये काम शुरू किया था कि थोड़ा सा पानी उनके पास होगा, कुछ बीज होंगे, और वहाँ पे जो जड़ों के ऊपर स्प्रे करके वो खुराक दे के, तो इस तरह से कुछ ताज़ा भोजन पैदा कर सकते हैं अपने वैज्ञानिकों के लिए। उसी जो प्रिंसिपल को, उसी जो एक तरह सा जो एक साइंस का प्रिंसिपल है, उसको इस्तेमाल करते हुए ये एरोपोनिक्स का विस्तार, इसका जो कहिए और साइंस इसके ऊपर की गई है, खोज की गई है, ताकि उसी जो प्रिंसिपल को, उसी विधि को आलू के लिए यूज कर सकें, आलू के लिए इस्तेमाल कर सकें।
0: एरोपोनिक खेती की तकनीक दुनिया भर में बेहद लोकप्रिय हो गई है। खास तौर पर शहरी वातावरण या उन स्थानों के लिए ये तकनीक आदर्श मानी जाती है जहां स्थान सीमित है। इस तकनीक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर आपके पास अपने छोटे से बगीचे या छत पर कोई जगह है, तो आप उसका इस्तेमाल अपने भोजन को उगाने के लिए कर सकते हैं, जिसमें आपको खेती के लिए बहुत ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिट्टी आधारित खेती की तुलना में खाद्य उत्पादन की यह टिकाऊ विधि 80-90% कम पानी का उपयोग करती है। मिट्टी की अनुपस्थिति, हवा या धुंध की उपस्थिति में पौधों को उगाने की यह तकनीक खेती के भविष्य के रूप में उभर रही है।
2: कृषि के क्षेत्र में कृषि संस्थानों और तकनीकी मार्गदर्शकों की

0: भूमिका है वो हमेशा से ही काफी अहम रही है। नई मशीनों की बात हो या फिर आधुनिक तकनीकों की बात हो, इनके बारे में जानकारी हमारे किसानों तक पहुंचाने में इनका हमेशा से ही अहम योगदान रहा है।
1: एरोपोनिक का सीधा सा मतलब है हवा में उगना। एरोपोनिक सिस्टम में कोई माध्यम नहीं होता है, क्योंकि पौधों की जड़ें खुले जड़ क्षेत्र के वातावरण में स्वतंत्र रूप से लटकी रहती हैं। एरोपोनिक सिस्टम के विकास कक्ष को पानी, पोषक तत्व और हवा की आदर्श मात्रा प्राप्त होती है।
2: किसान भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं, आलू, गेहूं और धान के बाद तीसरे नंबर पे जो फसल है, जो हम लोगों के भोजन का एक हिस्सा है, और बहुत मात्रा में आलू का हमारे खान पान में इस्तेमाल किया जाता है, और लगभग 60 मिलियन मैट्रिक टन्स, या ये कहें कि 600 लाख जो टन आलू इस कंट्री में, इस मुल्क में पैदा किया जाता है, और 60 मिलियन मैट्रिक टन का जो आलू जब पैदा करना है, तो लगभग 7-8 मिलियन मैट्रिक टन्स जो हमें बीज की जरूरत पड़ती है। इस बीज को पैदा करने के लिए जो रिवायती सिस्टम है बीज पैदा करने का आलू का, जो कि आज भी चल रहा है, जिसमें वैज्ञानिक लोग सबसे पहले ब्रीडर सीड पैदा करते हैं, उसके बाद फिर फाउंडेशन 1, फाउंडेशन 2, और उसके बाद सर्टिफाइड बीज पैदा करके किसानों तक पहुँचाया जाता है। वो जो बीज है वो कई सालों से वो बीज बन रहा है, लगभग 40 सालों से बन रहा है इस कंट्री में, लेकिन वो बीज वैज्ञानिक लोग जितना बनाते हैं वो बहुत मात्रा बनाते हैं, पर पूरे कंट्री की जो, पूरे देश की जो बीज की ज़रूरत है उससे पूरी नहीं होती। तो जो सप्लाई और जो डिमांड है या मांग है, उसके बीच में बहुत बड़ा एक गैप था, जो कि अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है एरोपोनिक्स टेक्निक के आने के बाद। तो उस बीज की जो कमी है बीज की, उसको पूरा करने के लिए दूसरी तकनीकें, जैसे कि टिश्यू कल्चर टेक्निक और एरोपोनिक्स टेक्निक, इसी तरह से एपिकल रूटेड कटिंग की जो टेक्निक है, जो और भी कई जो नई नई टेक्निक्स को साइंटिस्ट लोगों ने इजाद किया है।
1: मिट्टी की अनुपस्थिति में, हवा या धुंध की उपस्थिति में पौधों को उगाने की तकनीक को एरोपोनिक्स के रूप में जाना जाता है। एरोपोनिक खेती का उपयोग कई प्रकार की फसलों को उगाने के लिए किया जा सकता है, जैसे सब्जियां, फल और फूल। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय केंद्र जालंधर के प्रमुख डॉक्टर अनिल शर्मा ने बताया कि इनके संस्थान में इस विधि से उच्च गुणवत्ता वाले सीड का उत्पादन किया जा रहा है। इन्होंने ये भी कहा कि इस तकनीक की खासियत ये भी है कि सीड का उत्पादन अन्य विधि के मुकाबले बड़ी तेजी से होता है।
3: सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि हमारी एक सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो कि कहेंगे कि वर्ल्ड रिनोन टेक्निक है, एरोपोनिक है। एरोपोनिक में हम जो डिजीज फ्री सीड, बिना बीमारियों के अच्छी क्वालिटी का सीड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। उसका जो एक खास बात यह है कि वो सीड की जो रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, मतलब वो सीड बढ़ाना, वो बड़ा फास्ट है। अगर एक प्लांट से बहुत सारे ट्यूबर प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ये एक एरोपोनिक टेक्निक है जो हमारे पूरे कंट्री में अभी फैली हुई है, और जहाँ पे भी एरोपोनिक लग रहा है, लगभग हमारे ही जो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके थ्रू ही वो वहाँ पे इंस्टॉल होता है। तो ये हमारी एक वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट्स है।
4: आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक, और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार।

संपूर्ण जानकारी होने से उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने में मदद मिलती है। बता दें आपको कि हमारे देश के जो कृषि वैज्ञानिक हैं, वो भी आधुनिक तकनीकों की जानकारी किसानों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। एरोपोनिक तकनीक की बात करें तो इसके बारे में

0: आलू अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक क्या जानकारी दे रहे हैं, आइए जानते हैं।
1: वैज्ञानिकों का मानना है कि गेहूं और धान जैसी फसलों में प्रति हेक्टेयर जितनी पैदावार होती है, लगभग उसके बराबर ही आलू में प्रति हेक्टेयर बीज गंध की आवश्यकता होती है। वहीं आलू में उत्तम गुणवत्ता वाले बीज की उपलब्धता हमेशा ही आवश्यकता से कम रही है। ऐसे में नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर आलू के बीज उत्पादन का प्रयास किया जाता रहा है। पारंपरिक विधियों द्वारा आलू के बीज तैयार करने में कई कई वर्षों का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसे में कृषि संस्थानों द्वारा और वैज्ञानिकों की कठिन प्रयासों के फलस्वरूप आलू के बीज उत्पादन के लिए एरोपोनिक तकनीक को इस्तेमाल में लिया जा रहा है। इस तकनीक की मदद से प्रति पौधा 40 से 50 छोटे कंद मिलते हैं। यह पारंपरिक आलू बीज उत्पादन की विधियों से संख्या में 10 से 12 गुना अधिक होते हैं। इस विधि में बीज कंदों को हर चौथे पांचवे दिन तोड़े जाने के कारण इनके आकार में समानता बनी रहती है। आवश्यकता अनुसार तोड़े जाने वाले आलू का आकार भी हम सुनिश्चित कर सकते हैं। इनकी एक समान बिजाई करना भी आसान रहता है। एरोपोनिक में पौधों को हवा में ही उगाया जाता है, इस कारण मृदा जनित रोगों के होने की आशंका नहीं होती। खेत से प्राप्त होने वाले आलू बीज कंदों की अपेक्षा एरोपोनिक से बीज कंदों की प्रति पौधा पैदावार लगभग दुगनी प्राप्त होती है। इस प्रकार सभी पौधों की जड़ों को पोषक तत्वों की उपलब्धता पर्याप्त एवं एक समान होती है। इस विधि में छोटे आकार के बीज आलू कंद होने के कारण उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना और ले जाना भी सुविधाजनक रहता है। मिट्टी की तुलना में एरोपोनिक विधि में सिर्फ 5 से 10 प्रतिशत पानी और 10 से 15 प्रतिशत पोषक तत्वों का इस्तेमाल होता है, इसलिए इस विधि को पानी की कमी वाले क्षेत्रों में भी आलू बीज उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। प्रति कंद उत्पादन लागत अन्य विधियों की तुलना में अपेक्षाकृत 5 से 6 गुना कम आती है।
2: एरोपोनिक्स के एक ऐसा तरीका है कि जिसमें जो आलू का किसान है उसको बीज पैदा करने के लिए जो बीज चाहिए, जिसको हम प्री बेसिक सीड बोलते हैं, उसकी मात्रा बहुत बढ़ जाती है। टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी में एक साल में एक पौधे से कई सौ पौधे तैयार कर लिए जाते हैं, और वो जो टिश्यू कल्चर के पौधे हैं, ये एरोपोनिक्स की विधि से पहले वो मिट्टी में लगाए जाते थे, और वो जो एक पौधा था वो 6 से लेके 8-9 आलू के कंद पैदा करता है। टिश्यू कल्चर से पैदा किए हुए कंद को बोलते हैं मिनी ट्यूबर, टेक्निकल भाषा में बोलते हैं मिनी ट्यूबर। अब ज़रूरत ये थी कि वो मिनी ट्यूबर की जो पैदावार है वो बढ़ाई जाए, और उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ाने के लिए इस टेक्निक जिसको एरोपोनिक्स बोलते हैं, इसका इजाद हुआ। और वही पौधा जो टिश्यू कल्चर का पौधा था, जब मिट्टी में लगाया जाता था नेट हाउस में, नेट हाउस इसलिए कि उसमें कोई भी कीट पतंगा जैसे कि सफ़ेद मक्खी चेपा ना आ पाए, सफ़ेद मक्खी और चेपा और या दूसरे कीट उसमें वायरस रोग का फैलाव करते हैं, उससे बचने के लिए नेट हाउस में जो पौधे टिश्यू कल्चर के लगाए जाते थे। अब वैज्ञानिक लोगों ने ये सोचा कि उसी पौधे से कोई ऐसा तरीका निकाला जाए जिसमें 6 से लेके 8 की बजाय बहुत ज़्यादा मात्रा में कंद बने, जो मिनी ट्यूबर ज़्यादा बने। उसी सोच के तहत ये एरोपोनिक्स विधि का विकास हुआ, इसके ऊपर काम किया गया। बेसिकली जो एरोपोनिक्स जो है, ये दो अंग्रेजी का शब्द है एरोपोनिक्स, एरो का मतलब हवा, पोनिक्स का मतलब कोई भी आप पौधे को हवा में उगा रहे हैं। तो एरोपोनिक्स में जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ग्रीन हाउस में, जिसमें के आपका टेम्परेचर कंट्रोल है, उधर पंखे चल रहे हैं, और मेरे पीछे जो एक पैड सिस्टम है जिसके ऊपर पानी गिर रहा है, तो अंदर का जो टेम्परेचर है वो हम लोग अपने हिसाब से कंट्रोल कर पा रहे हैं।
1: जैसा कि हमने जाना, एरोपोनिक खेती में मिट्टी का उपयोग नहीं होता, इसके बजाय ग्रीन हाउस में तैयार किया जाता है। पौधों की जड़ें जमीन में नहीं होती हैं, बल्कि वे हवा में ही लटकती हैं। वैज्ञानिकों के सुझाव पर ग्रीन हाउस में एरोपोनिक फार्म तैयार किया जाता है। इसके बुनियादी ढांचे में LED लाइट, पंप, मिस्टिंग नोजल, हाइड्रोपोनिक नेट पॉट और अन्य आवश्यक उपकरण शामिल होते हैं। इस ढांचे में लगे फसलों पर एक विशेष तरह के नोजल द्वारा पानी का छिड़काव किया जाता है। पानी का मिश्रण पोषक तत्वों से भरपूर होता है। पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सभी पोषक तत्व बिल्कुल संतुलन में मिले होते हैं, जो कि आलूओं की बढ़वार में मददगार होते हैं। पानी का ये मिश्रण समय समय पर ऑटोमेटिक सिस्टम द्वारा फसलों पर छिड़के जाते हैं। वहीं ये रोटेशन में भी लगातार बार बार इस्तेमाल होते हैं, जिससे लागत में भी कमी आती है।
2: जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एरोपोनिक्स में ये पूरा सिस्टम बना हुआ है, और ये जो पौधे हैं आप देख रहे हैं, ये ऊपर से तो सूर्य की रोशनी लेते हैं ग्रीन हाउस की शीट के बीच में से, और ये फसल जो आप देख रहे हैं इस तरह से है जैसे फैक्ट्री में बनाई गई हुई फसल हो। बहुत ही शानदार, बहुत ही तंदुरुस्त, बिल्कुल एक तरह के सपनों की फसल इसको कह सकते हैं। अब इसी का जो इसके नीचे कोई मिट्टी नहीं है, जो हम लोग जो रवायती सिस्टम है फसल पैदा करने का, उसमें हमारी जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी में होती हैं। यहाँ जो ये जो बॉक्सेस बने हुए, ये सिस्टम बना हुआ है, इसमें नीचे बिल्कुल मिट्टी नहीं है और जो जड़ें हैं वो हवा में लटक रही हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से ये जो हवा में लटक रही जड़ें हैं उनको कैसे खुराक दी जाती है। आप ये देखें कि ये पूरा एक सिस्टम है जिसमें जब हमने आलू तोड़ना है तो हम इस फसल को पूरा ऊपर उठा लेते हैं। जिस समय आलू की जो मिनी ट्यूबर की पिकिंग या हार्वेस्टिंग या तुड़ाई होनी है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये इस तरह से आलू जड़ें लटक रही हैं हवा में, और इसीलिए इसको एरोपोनिक्स बोलते हैं। और ये आलू लगे हुए हैं, ऊपर कंद लगे हुए हैं, तो हर तीसरे चौथे दिन इन जो कंद है, जैसे आज ये इनकी पिकिंग हो चुकी है, और नहीं तो हर तीसरे चौथे दिन इनकी पिकिंग, जैसे ये 2 से 3 ग्राम का आलू हो जाता है तो इसकी पिकिंग कर ली जाती है। और नीचे ये पूरा सिस्टम बना हुआ है जो कि ऑटोमेटिकली चलता है, हर जो सेट टाइम है 5-10 मिनट के बाद ये यहाँ से खुराक की स्प्रे ऊपर होनी शुरू हो जाती है। तो अभी जैसे ही टाइम आएगा इसके स्प्रे होने का, ये ऑटोमेटिकली स्प्रे होनी शुरू हो जाएगी। इसमें आप इस तरह से जड़ों को टच कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि इनमें कोई बीमारी तो नहीं है, इनका रंग कैसा है, और इनका जो आलू नए बन रहे हैं या कितने बन रहे हैं, ये सारा कुछ अपनी आँखों से देखा जा सकता है। तो इस तरह से ये जो एरोपोनिक्स है हवा में जिसका होना हम कह सकते हैं, आप देख पा रहे हैं। अब ये आपके सामने जब स्प्रे होने का टाइम हो गया और इसके ऊपर जड़ों के ऊपर ऑटोमेटिकली जो वो सॉल्यूशन, वो पानी स्प्रे हो रहा है, जिस पानी में सब तरह के जो पूरे जो तत्व है जिसको बोलते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक, फेरस, मॉलिब्डेनम, और जो भी कोई खुराक की ज़रूरत है उसमें पानी में घोल के रखी जाती है, और ऑटोमेटिकली जो पंप है इसके ऊपर स्प्रे करता है हर 5 से 7 मिनट के बाद। तो इस तरह से ये एरोपोनिक्स किया जाता है, और ये जो क्रांतिकारी जो टेक्नोलॉजी है, ये बेसिकली इसमें ये जो मिनी ट्यूबर जिसको हम बोलते हैं, तो ये एक साल में, जैसे ये यूनिट आप देख पा रहे हैं, तो इस यूनिट में 5 लाख ये मिनी ट्यूबर पैदा किए जा सकते हैं। और इसी तरह जो बने हुए यूनिट हैं अलग अलग, कोई 10 लाख कैपेसिटी का है, कोई 20 लाख कैपेसिटी का, एक साल में प्रोडक्शन का ये सिस्टम है। और ये सब कुछ भारतवर्ष में ये डिज़ाइन तैयार किया गया है, सब कुछ हमारे साइंटिस्ट लोगों ने मिलके इसकी डिज़ाइनिंग की है, इसके प्रोटोकॉल सेट किए हैं, और इसका कब फसल लगेगी, कौन सी लगेगी, कितनी दूरी पे लगेगी, कितने दिनों बाद आपने कौन सी खुराक इसको देनी है, ये सारा कुछ CPRI में पिछले 10 से 15 सालों में किया गया है।
0: हमारे देश का किसान बहुत जागरूक है, नई मशीनों के उपयोग की बात हो या फिर नई आधुनिक तकनीकों को अपनाने और उनके बारे में सीखने की बात हो, हमारे देश का जो किसान है हमेशा से ही जागरूक रहता है। हमारे देश के वैज्ञानिकों से एरोपोनिक तकनीक की जानकारी हासिल कर हमारे देश के जो किसान है वो ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो रहे हैं।
1: भारत विकासशील देश है, हमारी वर्तमान सरकार देश को आगे बढ़ाने और खासकर कृषि के क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा मजबूती देने के उद्देश्य से काम कर रही है। केंद्र सरकार खेती के क्षेत्र में नई तकनीकों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है, साथ ही किसान भाइयों को नई तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित भी कर रही है।
2: किसान बंधुओं, हमने उधर एरोपोनिक्स में जो कि ग्रीन हाउस में लगा हुआ पूरा सिस्टम है हवा में आलू पैदा करने का, वहाँ हमने ये आलू, आपने देखा कि इस तरह से हमने वहाँ से ये तुड़ाई करते हैं हर तीसरे चौथे दिन वैरायटी के हिसाब से। ये आप देख रहे हैं कि वहाँ जब जिस समय तुड़ाई होती है, पिकिंग होती है या हार्वेस्टिंग होती है, उसमें उस समय इनका जो रंग है इस तरह से लगभग सफ़ेद रंग के होते हैं। अब क्या है कि ये जो आलू हैं, जो ये मिनी ट्यूबर्स हैं, ये इसी तरह से स्टोर में नहीं रख सकते 6-7 महीने के लिए, 8 महीने के लिए। अब इनका छिलका पकाना पड़ता है, इनकी क्योरिंग करनी पड़ती है, या इनको हम लोग कहें कि इनकी ग्रीनिंग करनी पड़ती है, इनको मजबूत बनाना पड़ता है। उस मजबूती के लिए ये सिस्टम बना हुआ है। इस सिस्टम में एक खास मात्रा में खास दिनों के लिए और मतलब लाइट देनी पड़ती है, और लाइट में जब ये रखते हैं तो इस तरह से ये आलू जो हैं इनका कलर चेंज हो जाता है, इनका छिलका पक जाता है, ये सफ़ेद से या तो हरे रंग के हो जाएंगे या फिर थोड़ा सा जैसे ये भूरा रंग है, ये डिपेंड करता है कि वैरायटी कौन सी है, किस्म कौन सी है। तो अब ये जो 8 से 10 दिन में ये इनका छिलका पक गया है और इनका पूरा अच्छे से ये जो मिनी ट्यूबर ये तैयार है आगे स्टोर में रखने के लिए। अब इस आलू को 2 से 3 डिग्री वाले स्टोर में यहाँ पे लगभग 7 से 8 महीने स्टोर किया जाएगा, तो वहाँ पे इसको रख दिया जाएगा और उसके बाद फिर इस आलू को निकाल के लगभग 20-25 दिनों तक रखा जाएगा रूम टेम्परेचर पे, 25 डिग्री पे, 24-25 डिग्री पे, और फिर इसमें पुंगराव आ जाएगा, इसमें जर्मिनेशन आ जाएगी, और ये जो जर्मिनेशन होने के बाद फिर इसको खेत में बोया जाएगा। खेत में बोने का भी विधि विधान है, एक तकनीकी है CPRI की जिसको बोलते हैं सीड प्लॉट टेक्निक, मतलब कब बोना, कब पत्ते काटने, कौन कौन सी उसमें दवाई का छिड़काव करना, कैसे फसल को कीट पतंगों से बचाना ताकि उसमें वायरस ना फैले। तो फिर ये जो G0 जिसको बोलते हैं या मिनी ट्यूबर बोलते हैं, इसको खेत में जब लेके जाएंगे तो पहले साल ये होगा खेत में, पहले साल में बोलेंगे Generation 1, मतलब पहली पीढ़ी उसकी फील्ड Generation 1। फिर अगले साल उसका दोबारा से नेक्स्ट अगले साल में जाएगा Generation 2 होगा, फिर Generation 3 होगा, फिर Generation 4 होगा। इस तरह से जो किसान है उसके पास बीज पहुंचने से पहले G1 Generation 1, G2 Generation 2, फिर G3 G4, वो इस तरह से ये आगे सीड को बढ़ाया जाता है। बढ़ाने का ये है कि ये जो एक दाना है, जब खेत में G1 बनेगा, 1 के 5-6 बन जाएंगे, जब ये G2 बनेगा तो लगभग आप ये मान के चलिए 50 के करीब बन जाएंगे, जब G3 बनेगा तो 50 को अगर 6 गुना करें तो 300 के करीब बन जाएगा, जब G4 बनेगा तो एक दाने से 1500-1600-1700 दाना बन चुका होगा। तो ये कह सकते हैं कि एक दाने से G4 के 1600-1700 दाने बन चुके होंगे, जो कि लगभग 1.5 कट्टे के आसपास हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन साइज कैसा है। तो इस तरह से ये जो बीज है एक बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन जो आलू की दुनिया में ला रहा है। जो किसान इससे जुड़े हुए हैं उनको पता है कि कैसे उनकी इस विधि के आने से, ये एरोपोनिक की विधि और इसका जो टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी के साथ जो मिलान होने के बाद जब ये मिनी ट्यूबर की मात्रा इतनी बढ़ रही है बड़ी तेजी से, अब हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में किसानों को पूरा जो बीज की जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है, जितनी उनकी जरूरत है, उसकी भरपाई होनी शुरू हो जाएगी।
1: एरोपोनिक तकनीक नई तकनीकों में से एक है। भारत में एरोपोनिक खेती सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है जिसने इस दशक में खेती में क्रांति ला दी है, जिसे लेकर हमारे देश के किसान भाई बेहद उत्साहित हैं। वे इस तकनीक के बारे में जानकर इसे अपनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। हालांकि भारत में अभी एरोपोनिक को अपनाने की गति धीमी है, लेकिन किसान इस तकनीक को लेकर बेहद उत्साहित और इसे अपनाकर खेती करने के लिए प्रयासरत हैं।
3: एरोपोनिक सीड सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन से मैं गया था, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि ये बढ़िया सीड बनाना है तो एरोपोनिक का ही सीड बनाओ।

0: तो मैंने उनसे सीड परचेज किया, तो मैं वो लगाया और तीजा साल हो गया है, तो मैं चौथे साल में उसको बेचूंगा। जो भी फर्ज करो, ये एक जो बंदा परचेज करेगा तो उसको पता चल जाएगा तुहानू कि इसकी कितनी ही यील्ड है।
1: एरोपोनिक खेती की तकनीक अपनी संभावनाओं की वजह से दुनिया भर में बेहद लोकप्रिय हो गई है। भारत देश में भी इसकी जानकारी लोगों तक पहुंच रही है और किसान भी इससे अवगत हो रहे हैं। जैसा कि हमारे देश में भूमि की कमी है और इस कमी को देखते हुए एरोपोनिक तकनीक में खेती का भविष्य नजर आ रहा है। इस तकनीक से जमीन की कमी को पूरा किया जा सकता है, साथ ही उपज भी कई गुना तक बढ़ाई जा सकती है। एरोपोनिक तकनीक की मदद से कृषि संस्थान आलू के स्वस्थ और अच्छे बीज किसानों को उपलब्ध करा सकेंगे। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि किसान इस तकनीक से कम लागत में आलू की ज्यादा से ज्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं।
2: तो इस तरह से ये जो टेक्नोलॉजी जब दी जाती है किसी किसान को या किसी कंपनी को, तो उसमें लगभग 1 साल से लेकर 1.25 साल तक जो CPRI की वैज्ञानिकों की टीम है उस कंपनी के साथ या किसान के साथ काम करती है। तो इस तरह से इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से और बीज की मात्रा ज़्यादा बढ़ाई जाती है, ज़्यादा पैदा किया जाता है। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो इस टेक्नोलॉजी को ले सकते हैं और आलू की बीज की दुनिया में जो आ रही क्रांति है उस क्रांति का आप हिस्सा बन सकते हैं।

एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलिहान में। और अभी आपने एरोपोनिक खेती जो एक किस्म का नया आविष्कार भी है और किस तरीके से इस विधि का उपयोग करके हम अपनी खेती में बदलाव कर सकते हैं, ये बहुत जानना बहुत आवश्यक था। सो आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से सुना, आशा करते हैं कि हमारे किसान साथी, क्योंकि बहुत सारी इसमें गवर्नमेंट की ओर से भी बहुत सारी सब्सिडी भी दी जाती है और साथ साथ में गवर्नमेंट के जो अधिकारी रहते हैं, सरकारी विभाग के अधिकारी रहते हैं, वैज्ञानिक रहते हैं, उनसे भी जाकर हमें सलाह लेनी चाहिए। और चूंकि गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी के मौसम में सबसे पहले तो हमें अपनी मिट्टी की जाँच कराना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा ताकि तत्व के बारे में पता चले कि किस तत्व की हमारे खेत में कमी है। साथ साथ में गर्मियों की गहरी जुताई पर भी हमें जोर देना चाहिए और इन नई नई पद्धतियों के बारे में सुनना चाहिए, गौर फरमाना चाहिए और इसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। इसी के साथ मित्रों, हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेत खलिहान कार्यक्रम से जाने का। कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा हमारे इस नंबर पर, नंबर है हमारा 9219207749। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति, आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप इबीरा अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। और दोस्तों, हम लेके आ गए आप सब जनन के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली। और साथियों, विधा बुंदेली कार्यक्रम में आज सुने अपन विधा कछियाई गीतन को और इनको आनंद लें। सो दोस्तों, आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। सो दोस्तों, देर न करत भाई अपन ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊ थे और

किरदार पे तीन डरे झूला और चीनो सखी अपने दूल्हा। देखो दोस्तों, अपन सब जन ने जो भजन सुनो है, ई भजन में अपन ने सुनो है भोले राम कुशवाहा जी के गाय भाई भजन को। अब आओ सुनत है फिर से नहीं के गाय भाई भजन को। सो आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।

बिजनार सतावे के मैया मोए जा बिजनार सतावे। अब आओ आगे सुनते हैं कि जीवन नैया भूला नाथ हमारे। देखो कितना प्यारा भजन अपन अब आगे सुन देखो जा रहे हैं। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।

मोरी नैया पार लगा दो भोले बाबा लहरी। देखो कितना प्यारा जो भजन सुनो है, इसको आनंद लाओ। आप दोस्तों आओ एक क्रम में फिर से सुनते हैं गंगाराम भैया जी के गाए भय सुर में एक कछिया भजन को, कि मथुरा से दूती आई रे सभा के बीच में। आओ सो सुनते हैं गीत।